अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्त अगोचर लहिया, वस्त अगोचर पाए काट दीपक रहया समाई, कह कबीर अब जाने आ

कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पतिजै ना पतिजै ताओ क्या कीजै। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज साहिब जी दी साजीन वाजी गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ आप जी अमृत वेले तो लैके सलाना मीरी पीरी नगर कीर्तन दे विच हाजरियां भर के सेवावां करके उपरंत नगर कीर्तन की समाप्ति तो बाद खुले पंडालां विच सजे दीवाना विच बहुत ही सत्कार योग सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे हजूरी रागी सिंह भाई साहब भाई जगतार सिंह जी भाई साहब भाई संदीप सिंह जी भाई साहब भाई सुखजीत सिंह जी कुहाड़का जथियां दे वल्लों रब्बी बाणी दे कीर्तन आप संगत नूं सुना के निहाल कीते ने। समूही संगतां वल्लों जथियां दा धन्नवाद। सो साध संगत जी हुण सुख आसन दी सेवा होवेगी। उस तो उपरंत दरबार हाल दे विच दीवान सजे हुए ने आप संगतां ने उत्थे सजन की कृपालता करनी। जिन्हां भी संगतां अमृत वेले तो लैके जां पिछले 16 जुलाई तो जो मीरी पीरी सलाना समागम आप संगतां दे सहयोग दे नाल कथा दरबार ढाडी दरबार कीर्तन दरबार ते 3 रोजा मिसरत 31 राग दरबार सजे ने आप संगतां ने भरवा हुंगारा भर के हाजरियां भर के सेवादार नाल सहयोग बख्शिश कीता है। आप समुचियां ही गुरु नानक नाम लेवा संगतां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरु जी कृपा करन जिन्हां भी संगतां ने तान मान तहन करके सेवावां कीतियां ने सारियां ही संगतां दीयां कीतियां सेवावां भेटावां किते भी गुरु के लंगरां विच सेवा कीती है दरबार हाल विच सेवा कीती है महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जानी जान ने महाराज सारियां दी सेवा लेखे लाउण प्रवान करन दरों करों गुरसिखी नामदान सेवा सिमरन दीयां दातां बख्शिश करके इस तरह परिवारां नूं गुरसिखी दी दात बख्शिश करके निहाल करन। सो हुण महाराज दी सोखा सिंह दी सेवा होवेगी। उपरंत साध संग जी जो उपर दरबार दे विच दीवान सजे हुए ने उथे आप जी ने सजन की कृपालता करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुग आदि सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुग आदि सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुग आदि सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुग आदि सच है भी सच नानक होसी भी सच।
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ।

से होती है, मुश्किल तो जे है कि बड़ी मुश्किल से होती है। दिल विचों अरदास, हिरदे दे विचों चेते रखो, अरदास निकलनी बहुत औखी है, लेकिन जो निकलती है फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें पूरा होने तो नहीं रोक सकती। जो आप किसी नूं याद करते हैं, जो दिलों याद किया जाए तो फिर मोबाइल की घंटी वज जाती है, फिर बंदा कहता यार मैं तेनूं याद करता था तेरा फोन आ गया। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं सिख याद कर रहा, प्रेम का शिखर हो गया। अकाल तख्त साहब बैठे गुरु हरगोबिंद महाराज थले आए, वह कहते बाबा विधि चंद साहब जी तैयारी करो। पातशाह तैयारी किहड़े पासे जाना है? सतगुरु कहिंदे कि सिख याद करदा बड़े प्रेम नाल, उहनूं मिलन जाना है। धन है पातशाह उह सिख, धन उहदा प्रेम ते धन मेरा गुरु। सिख किते याद करदा, लेकिन उहदी अरदास गुरु चरणा अंदर अमृतसर साहिब दी धरती ते पहुंच रही है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। पंजी सिख तैयार होए। गुरु हरगोबिंद महाराज अपने प्यारे गरीब सिख भाई पल्ले दे प्रेम दे खिचे होए अमृतसर साहिब तो चले ते बताले पिंड दी साथ विच आ गए। पिंड दे पतवंते मोहतबर साथ विच बैठे ने। भाई पल्ले ने कई बार आख्या मेरा गुरु दो तेगा वाला, पिंड वाले हो मैनू किते धौंकल जाण दी लोड़ नहीं, मेरा गुरु आवेगा मैं पातशाह दे दीदार करांगा, उत्थे तुसी भी भागा वाले बन के मेरे पातशाह दे दर्शन करके अपना जीवन सफला बना लेना। पिंड वाले ईरखा करदे भी ये गुरु गुरु की रट लाई रखदा, ना इहदी मां पल्ला छड्डदी गुरु दा ते ना इह पछां हटदा। लेकिन अज सच्चे पातशाह गुरदेव गुरु हरगोबिंद पातशाह जा पहुंचे, हैरान हो गए, हके बके हो गए, कौन आ गया? शहनशाह वर्गी इहदी शान है, सिर ते कलगी दस्तारा, कुंडे मशहरे, दगदग करदा चेहरे दा नूर, लखां सूरजां दा तेज पातशाह दे चेहरे ते, दुनिया दा कुल हुसन एक पासे ते गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जीआं दा सुहापण एक पासे। इन्हां नूं सोहणियां दे सुल्तान आखदे ने विद्वान। अज मेरे पातशाह बताले पिंड विच ने, कहिंदे ने कि जदों वेख्या उस पिंड दी साथ विच बैठे पिंड वालियां नूं अपने प्यारे सिख भाई पल्ले दी बाबत सतगुरु पुछ रहे ने, ईरखां दी अग विच सड़दे पिंड वालियां दे विचों सठ दा मोहरी बंदा भाई पल्ले दी निंदिया गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सामने इंज कर रहा।

0: जिसने आज चलना सीखे तो कितना कि चलेगा, एक कदम दो कदम गिरेगा। धार्मिक तल ते किवें पहचान करोगे, चल भी रहे है ते गिर भी रहे है। सच बोले है चल पे है, झूठ बोले है गिर गया। अंदर दया दा वासा होया है चले है, अंदर कठोरता दा वासा होया गिर गया। अंदर दान दी रुचि पैदा हुई है चल पे है, अंदर बेईमानी दी रुचि हुई है गिर गया गिर गया। अंदर नितनेम करण दा चाव पैदा होया है चल पे है, पर गंदा लिटरेचर गंदा साहित्य पढ़न दा चाव पैदा हो गया गिर गया। हमेशा शरीर करके बच्चा बच्चा नहीं रहेंदा। धार्मिक तरते थे कई 70-80 साल तक भी बच्चे ही बने रहेंदे, कुछ भी नहीं, चल देने गिर देने, सत्संग भी कर लेंदे ने, कुसंगत भी कर लेंदे ने, दान भी कर लेंदे ने, बेईमानी भी कर लेंदे ने, सच भी बोल लेंदे ने, झूठ भी बोल लेंदे ने। जीवन भर ऐसा चलता है। इस वास्ते ईरानी सूफी संत सादी ने ते साफ कह देता है, बुजुर्गी बा अकल अस्त नके बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त नके बा माल। बुजुर्गी उम्र करके नहीं है भई ये 70 साल दा है, 80 साल दा है, 90 साल दा है, कहिंदे उम्र करके बुजुर्गी नू ना नापो, अकल करके नापो। अकल कितनी है, समझ कितनी है। कई तन करके बुजुर्ग होंदे ने, अकल करके बच्चे ही होंदे ने, बच्चियां दी गल करदे ने, बिल्कुल बचपना होंदा है। इस तो उल्ट भी हो सकता है, कई शरीर करके ते बच्चे होंदे ने, अकल करके बुजुर्ग होंदे ने। शरीर करके ते साढ़े 5 वरियां दे ने धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज, जिस दिन गुरगद्दी ते बैठे ने। अकल करके 100 साल देने बुजुर्ग ने, महान ने। शरीर करके जो दीवारां दे चिने जा रहे ने, मासूम बच्चे ने, मासूम बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने, बुजुर्ग ने। इस तो उल्ट भी है, शरीर करके ते बुजुर्ग ने 70 साल 80 साल हो गए, अकल करके निरे ही बच्चे दे बच्चे ने। मैं कैलिफोर्निया दे कई गुरुद्वारे च देखे 70-80 साल दे बुढ़े 10-11 बजे आ जाते ने गुरुद्वारे, दिन भर ताश खेडते ने कई गुरुद्वारे, गप्पा मारते ने, निंदा उस्तद करते ने, फिर जो संध्या होने लगती है, रहराज साहब का पाठ शुरू होता है, कथा कीर्तन का वेला भजते ने, इंज जिवें बिच्छू कटेगा भजते ने। हुण गुरुद्वारे का नाम है की लिया, मैनू कहना पिया एक नू जद जान लगे, मैं कह 3 जथियां का कीर्तन है अज, एक जथा दरबार साहब तो आया, 2 होर वड्डे जथे दिल्ली तो आए ने, ते मैं कथा भी करनी है, रुक जाओ। कहिंदे इत्थे हुंदा ही रहिंदा, इत्थे होर की होणा, इत्थे ऐ हुंदा ही रहिंदा। तो उत्थे मैनू कहना पिया ये उम्र करके बुजुर्ग ने, अकल करके बच्चे ने, अकल करके बच्चे। गुरु हरकृष्ण जी महाराज तन करके शरीर करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। कलगी धर दे लाडले तन करके बच्चे ने, अकल करके बुजुर्ग ने। 7 साल दा प्रहलाद बुजुर्ग है, 60 वरियां दा हरनाकश बच्चा है। प्रहलाद नू कहिंदा है तू जपया कर, जल हरनाकश थर हरनाकश, जब तू जपेगा ते तेनों देख के बाकी बच्चे भी जपनगे। ते 7 वरियां दा प्रहलाद कहिंदा है बापू की बच्चियां वाली गल कर दे हो, जल है राम थल है राम। 7 साल दा बच्चा बुजुर्गां वाली गल करदा है, और 60 साल का बुढ़ा बच्चियां ली गल करता है। बच्चियां दे कदी कदाई कोई बुजुर्ग होंदे ने, बुढ़िया दे बहुते ते बच्चे ही होंदे ने, गुस्ताखी मर बच्चे ही होंदे, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, जिंदगी एवें गवाई जांदे ने। ताश खेडदे होया नो एक सज्जन ने पूछ लिया की कर रहे हो, समा पास पै कर दे। फिर मेनू विचकार बोलना पे, समा रहा भी है, तुसी ते आखरी दहाने ते बैठे हो, समा रहा भी है, समय नू सफल करो जिहड़ा थोड़ा बहुत रह गया। अजू समझ कच बिगड़े हो ना ही, बजले नाम मोरा, अजे भी कुछ नहीं बिगड़े तो संभाल कर ले, पर नहीं अकल नहीं इतने। शेख सादी कहंदे ने, बुजुर्गी बा अकल अस्त नखे बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त नखे बा माल। अमीरी माल असबाब तो ना ना पोए दे कोले इतने मकान ने, इतनिया महल माड़िया ने, इतना कारोबार है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी धन संपदा है। शेख सादी कहंदे ने, ए अमीरी दी निशानी नहीं, दिल कितना वड्डा है। इस तो पता चलेगा शूम है कि अमीर है, गरीब है कि अमीर है, दिल तो नापो। मुहम्मद साहब के निकटवर्ती हजरत उमर ये बसरा तो बगदाद जा रहे सन, उठते रस्ते दोपहर हो, नखलिस्तान उसनों कहने जिते 4-5 दरख्त होवन, थोड़ा जिहा पानी होवे सरोवर, उन्हों नखलिस्तान कहंदे ने। अरब देशां विच आखिर उसकी बहुत महानता होंदी है। उत्थे रुके आराम करन नूं, उठ नूं दरख्त नाल बने है, पानी नाल मूंह धोता है। एक नान कोल सी रोटी, खोल के जैसे खान लगे कि भिखारी आ गए। भिखारी नहीं सी पर चूंकि मंगदा पिया सी, इस वास्ते मंगता। उन्हें आखिया, हजरत मैं 3 दिन का भुखा। कूत शहर दे च मैं जाना है, अजे बहुत दूर है, मैं भुखा पहुंच भी सकांगा कि नहीं, पैदल हाँ, तुहाडे कोल उठ है, बेहतर होवेगा इस नान दा चौथा भाग मैनू दे दो, चौथा हिस्सा, मेरी थोड़ी भुख मिट जाएगी, मैं चल पवांगा। हजरत उमर ने सारा नान ही दे दिता, ले। पर ओ भी समझदार बंदा सी, कहन लगा नहीं, तुसी भुखे जाओ, मेरा हिरदा ए भी कबूल करन नू तैयार रहे, मैनू इसका चौथा भाग दे दो। पता है हजरत उमर ने की आख्या, तू 3 दिन का भुखा, मैं अधे दिन का भुखा, मेरे ते नान खाना हराम है, ए ले तू। उस मनुख ने आख्या, पहली दफा एक अमीर मनुख देखे है, अमीर मनुख। दोपहर का वकत सी, महात्मा बुद्ध एक पिंड तो दूसरे पिंड जा रहे ने, नाल चेला है आनंद, जो रिश्ते दे चचेरा बिरा सी, चेला बन गया सी, नाल सी। उन्हें करमंडल पानी का नाल भर लिया, बई दोपहर का वकत, बिहार की गर्मी, आखिर 2 को दा पेंड है, 4 मील का पेंड है, अजे अद्धी वाट तय हुई होगी। महात्मा बुद्ध ने आख्या, आनंद तू नाल पानी लिया, हां लिया दे, करमंडल दे दिता, सारे का सारा एक बूटे च पा दिता। आनंद कहंदे, भगवान सानू प्यास लग सकती है, अजे ते रस्ता बहुत रहिंदा है, अद्धी वाट तय हुई है, सानू भी प्यास लग सकती है, तुसी सारा पानी दे दिता। महात्मा बुद्ध ने आख्या सानू प्यास लग सकती है, ये प्यास तो मर रहा सी। साडे कोल करमंडल पानी होवे आनंद, मैं किसे नू प्यास तो मरदा नहीं देख सकता। हां पानी नहीं सी गलवक, इस नू पता है विद्वान की कहंदे हुंदे ने। सतगुरां ने दसवंद दी मर्यादा बनाई है, एक मनुख कोल 10 करोड़ रुपए ने ते एक दे कोल सिर्फ 10 ने। एक ने 1 रुपया दसवंद कढ़िया दान कीता है, एक ने 1 करोड़ कीता है, बराबर ने। इस चक्कर च ना पैना जिन्हें करोड़ दान कीता है महान दानी है, कख नहीं दाने। ओदा 1 रुपया उस करोड़ तो घट नहीं है, ओदी कुल संपदा ही 10 रुपए सी। एक करमंडल पानी दा ही सी ओदे कोल, महात्मा बुद्ध कोल होर कुछ भी नहीं सी, दे दिता। मोगरे में मनते तनते धन लो सिर है सब ही नहीं को। कलगीधर पातशाह कहंदे ने मेरे घर दे जतन करके मन करके धन करके जो कुछ भी है सब जगत दा है, सब खालसे दा है, अपना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अमीरी माल असबाब तो नहीं है, एदे कोल इतनिया महल माड़ियां ने, एदा इतना बैंक बैलेंस है, एदे कोल इतनी धन संपदा है। अमीरी नापी जांदी है दिल तो, अगर दिल विच बिराह वास्ते भी थां कोई नहीं, प्यो वास्ते भी थां कोई नहीं, मां वास्ते भी थां कोई नहीं, तो इनू अमीर आखोगे? महाशुम मनुख है, कुछ भी नहीं, गरीब मनुख। लक्षण दसदे ने, स्वभाव दसदा है, तरजे जिंदगी दसदी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया। हे प्रभु मेरी उंगल पकड़, मैं नहीं चल सकता, मैं तेरे रस्ते ते चलते पिया पर उस बच्चे दी तरह जिन्हें अज चलना सीखे है, ते जिस बच्चे ने अज कदम पुटे ने कितने क पुटेगा। गुजरात दे इलाके च मैं देखे है जिस दिन बच्चा पहला कदम पुटे ना ओ घर विच शगन मनांदे ने, लड्डू वंडदे ने, नचदे ने, खुशियां मनांदे, बच्चे नू चलना आ गया। फिर जिस दिन बच्चा जबान खोलन लग पैंदा है, पहला बोल बोलदा है, फिर खुशी मनांदे ने, फिर ओ अपना इसनू अपने ढंग नाल मिठाइयां बना के वंडदे ने, पड़ोसियां नू बुला के, रिश्तेदारां नू बुला के, साडा बच्चा बोलन लग पिया, ओदी जबान चो बोल निकले। 4-5 साल दा बच्चा हो जाए ते बोले ना, मां बाप नू चिंता हो जाती, समझ नहीं आउंदी, बोलदा नहीं पिया। 3 साल दा बच्चा हो जाए, कदम ना पुटे, खड़ा ना होवे, मां बाप नू चिंता हो जाती, पता नहीं गल की है, कदम ही नहीं पुटदा, खड़ा ही नहीं होंदा। महाराज कहंदे ने हे प्रभु चलते पिया तेरे मार्ग ते, पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज कदम पुटे है, जिदा ध्यान थोड़ा जिहा भी शब्द दी तरफ गुरु दी तरफ चले है, समझ लो उसने कदम पुटे है, ते जिदा ध्यान ही नहीं चलिया, सुरत शब्द दा मेले, सुरत ध्यान नू कहंदे ने, सुरत शब्द दी तरफ गई है कि नहीं, पाठ कर रहे है सुरत उदे च है कि नहीं, सुरत स्रोत नू भी कहंदे ने, सुनन नू भी कहंदे ने। सुरत दे 3 अर्थ ने, चलो मैं ये भी दोहरा दिया, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, इते सुरत दे च है, सुन रहे है, ते जे सुरत दे च है ते सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी, ते जे सुरत आ गई है ते सुरत जुड़ जाएगी, ध्यान जुड़ जाएगा। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, पर पहले ते सुनना है, पढ़ी जा रहे है, सुनदा ते है नहीं पिया, अजे ध्यान नहीं चले, अजे बच्चे दी तरह है, जन्म ते इसदा हो गया है, चलना कोई नहीं है। देखो ते मैं फिर अर्ज करा, 3 साल हो जान बच्चा चले ना, मां बाप नू चिंता हो जाती है, 50-60 साल हो गए ध्यान शब्द की तरफ चलिया ही नहीं, गुरु नूं भी चिंता हो जाती है की हो गया इस नूं, क्यों नहीं चलता। मैं अर्ज करा घट लोगां दी सुरत शब्द की तरफ चलती है। इस वास्ते पढ़न दे नालों, गुरबाणी पढ़न दे नालों सुनना लखां गुणा औखा है। बिना सुरत तो सुन ही नहीं सकेगा, नहीं सुन सकेगा, पर बिना सुरत तो पढ़ सकेगा। भटकी हुई सुरत नाल, भटके हुए ध्यान नाल भी पढ़ सकता है। पढ़ने वास्ते ध्यान बार करना पैंदा है, नजरां भी बार करनियां पैंदियां, सुनन वास्ते ते शायद अखां भी बंद करनियां पैन, और ध्यान नूं अंतरमुखी करेगा तां ही सुन सकेगा, वरना नहीं सुन सकता। ए भी मैं अर्ज करा, एक मनुख उची उची बोल रहा हुंदा, दूजा सुन रहा हुंदा, सुनन वाला फिर कह देंदा एक दफा फिर आख मैं नहीं सुनिया, तू क्यों नहीं सुनिया, कहिंदा मेरा ध्यान किसे और पासे चला गया। इहदा मतलब ध्यान शब्द दे च नहीं, पाठ कर रहे है, ध्यान नहीं है, अजे इनू चलना नहीं आया, नहीं आया। समाज सुधारकां ने, राजनैतिक लोगां ने जो मनुखी समस्यावां दा समाधान पेश कीता, उहदे नाल वक्ती तौर ते ते सिलसिला ठीक, लेकिन मन दियां बेचैनियां दूर नहीं होईयां। हर मुल्क बेचैन है, हर मुल्क परेशान है, हर मुल्क चिंता तुर है। समाज सुधारकां ने ते राजनैतिक लोगां ने जो समाधान पेश कीते, इहदे नाल मनुख दी समाधि ते लगी ना, आनंद ते मिलिया ना। अवतारी पुरशां ने जो समाधान पेश कीते, लोगां ने कबूल ना कीता। किहड़े अवतारी पुरश नूं लोगां ने कबूल कीता है? किसे नूं तत्ती तवी ते बिठाया, किसे नूं जेल दे च पाया, किसे दे बंद बंद कटे ने, किसे नूं सूली ते लटकाया, किसे नूं बनवास भेज दिता है? किहड़े अवतारी पुरश नूं वक्त दे लोगां ने कबूल कीता? नहीं कबूल कीता। भगतां नूं भी नहीं कबूल कीता। कबीर दे उत्ते बड़े वड्डे तीन इल्जाम लगे ने, कतल दा इल्जाम लगया, जेल भी भोगनी पई, चोरी दा इल्जाम लग्या, सिकंदर लोधी ने अंदर पाया, दुराचार दा भी इल्जाम लग्या, केड़ा इल्जाम नहीं लग्या? ईर खालुआ ने सोचिया उंज ते पकड़िया नहीं जाएगा, कोई ऐसी व्यौंत बनाई अंदर ही जाए, एदा बाहर होना ठीक नहीं, हद हो गई। समाज सुधारक ते राजनैतिक मनुख दियां मानसिक समस्यावां दा समाधान पेश ना कर सके, बनी हुई है समस्या। हर मुल्क दे समाज सुधारक ते राजनीति मौजूद है, पर बेचैनी मौजूद है, परेशानी मौजूद है, चिंता मौजूद है। संत जना ने, भगत जना ने, अवतारा ने जो मानसिक समस्यावां दा समाधान पेश कीता, वो मनुख ने कबूल नहीं कीता, परवान नहीं कीता। तो समस्या त्यों दी त्यों बनी हुई है, हजारां साल तो बनी हुई है, और रोज रोज मनुखता दे तल ते बेचैनी परेशानी वधदी जा रही है, घटदी नहीं पई। मन दी समस्यावां दा समाधान की है? महाराज कहिंदे ने धर्म। इहदे नाल मन दी समाधि लगेगी, आनंद प्राप्त हो जाएगा, महारस दी प्राप्ति हो जाएगी, महाखेड़े ते खुशी दी प्राप्ति हो जाएगी। धर्म की है जो निर्मल कर्म ते खड़ा है, ते निर्मल कर्म की है हर को नाम जप, निर्मल कर्म, बस ऐ निर्मल कर्म। कल मैं अर्ज की थी सी, मनुखां दी सारी गति हलचल बोल चाल नाल कायम है, शब्दां दे कायम है। शब्दां दी बड़ी महिमा है, बोलां दी बड़ी महिमा है। दो कौड़े बोल बोले ने, अगला सारी रात तड़पदा रह गया, हुण उहनूं कोई आखे ना तैनूं कोई सूआ लगया, ना तीर लगया, ना गोली लगी है, एवें तड़पी जा रहे। दो बोला ने तड़पा के रख देते, दो बचना ने तड़पा के रख देते, पर दो मिठे बोल तड़प दे दिल नो शांति भी दे सकते। प्रभु दा नाम एक बोल है, बोल नो संस्कृत देच मंत्र कहंदे ने, शब्द कहंदे, शब्द मंत्र बोल वाक एक कोई गल है। गुरु दा वाक, गुरु दा शब्द, गुरु दा बोल, गुरु दी आवाज, गुरु दा मंत्र। मैनू चंगी तरह याद है अजे भी पंजाब दे कुछ पिंडां च आवाजा लो गुरु दा वाक नो हुक्मनामे नो इंज कहिंदे, गुरु दा आवाजा लो। इधर फ्रंटियर लहिंदा पंजाब जो पाकिस्तान दे चला गया, आउणा ते ग्रंथी साहब नू कहिंदे सन गुरु दा बोल सुना दो, हुक्मनामा सुना दो। पंजाबी च बोल कह देंदे ने, वाक कह देंदे ने, संस्कृत दे शब्द कह देंदे ने, मंत्र कह देंदे ने, गुरु मंत्र, गुरु शब्द, गुरु दा बोल, गुरु दा वाक। उस वाक नूं बार बार जबान दोहरावे ते मन सुने, मन दे चों दुख निकल दे जांदे ने, पाप निकल जे जांदे ने, और एक दिन वो मंत्र सिद्ध हो जांदा है। कहिंदे ने वाक सिद्ध हो गए, मंत्र सिद्ध हो गए, बोल सिद्ध हो गए, शब्द सिद्धि इस नूं मिल गई। कल दे बोल मैं थानू दोहरावा, जद बोलण दा मन दे ख्याल आउंदा है, पुरना आउंदा है, पवन नाभी नाल टकरां, नाभ खुलदी है, नाभी खुलदी है, उत्थों धुन उठदी है, इस वासे नाभी नूं धुन ही कहिंदे। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੁਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੁਨ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਗਾ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਧੇ ਤੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਸੀ, ਅੰਧਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ ਕੀ? ਇਹਤੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੱਥ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਖਾਂਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਕੰਨ ਛੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਵਨਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਔਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ। ਜ਼ਬਾਨ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਛਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ, ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਆਖਿਰ ਭੋਜਨ ਹੀ ਪਚ ਕੇ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ, ਭੋਜਨ ਹੀ ਪਚ ਕੇ ਮਾਸ ਬਣਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਜ ਮਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਉਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਮੰਨਣ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਫਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਾਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਬੋਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜੈਸੇ ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥਿਏ, ਇਨ ਬਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛਕਣਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੰਘਾਣੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਕੀ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਛੇ, ਤੇ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਛੱਕ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੋਮਿਟ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਈਰਖਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਾਮ ਕੀ ਜਪੇ, ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਈ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। जे को इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी ने शर्त लाई है, जे को खावे जे को पुंछे पुंछे के अंदर हजम करूं, पचावे भी से पचना भी चाहिए, हजम भी होना चाहिए। जपदिया माड़ा जे अनुभव मिले है बस हुण हजम नहीं आता। दो चार दिन अमृत वेले उठे है दूजियां नूं एवें ही समझण लग पे। मैं एक इस्लामी गाथा पढ़ रहा सी, मोहम्मद साहब दे दोते हसन हुसैन, ए मोहम्मद साहब दे दोवें दोते सन, हजरत अली दे पुत्र सन। हजरत अली आप दा दामाद सी, हसन छोटा जिहा 7-8 वरिया दा, अपने नाना हजरत मोहम्मद साहब नूं कहिंदा फजर दी नमाज मैं भी पढ़नी। पंज नमाजां ने ना, फजर दी, जोहर दी, असर दी नमाज, मगरब दी नमाज, फिर रात दे समय इस टाइम है ईशा दी नमाज, पंज नमाजां। फजर दी नमाज मैं भी पढ़नी, जोहर दी ओ पढ़दा सी, मगरब दी ओ पढ़दा सी, पर फजर अमृत वेले सुता बच्चा आखर सुता रहिंदा सी। कहिण लगा अपने नाने नूं मैनू भी उठाना, फजर दी नमाज मैं भी पढ़नी, तुसी बड़ी महिमा दसदे हो फजर दी नमाज दी, मैं भी पढ़नी। भावे मोहम्मद साहब ने कहा तू अजे बच्चा है, चलो जोहर दी पढ़ लैंदा, असर दी पढ़ लैंदा, ठीक। उन्हें जिद कीती, मोहम्मद साहब ने उसनों फिर जगा लिया, ठीक है, जिद करता है बच्चा, कहिंदा फजर दी पढ़नी है। सवेरे लै गए खाना खुदा दे, पढ़ी उसने नमाज, उन्हों महसूस होया इशा असर मगरब जोहर दी नमाज तो जिहड़ी फजर दी नमाज है इहदे च बरकत बड़ी है, रस बड़ा है। धन गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे ने हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निकुटे ना। बड़ी बरकत है, उनु रस आया, उनु कुछ खेड़ा मिले, उनु कुछ ताजगी नसीब हुई, उदी मन दी दुनिया कुछ प्रफुल्लत हुई। निवास पढ़ के दोवें वापस आ रहे नाना ते दोता। ये अरब दा इलाका गर्मिया दे महीने, लोकी बाहर सुते हुए कोठियां ते सुते खुले, पुराने जमाने च इस तरह ही होंदा सी। हसन हजरत मोहम्मद साहब नूं कहिंदा है कि किन्ने बदकिस्मत ने मूर्ख ने, आबे हयात खुदा वंड रहा है कि सुते पए ने, बड़े मूर्ख ने। पता है मोहम्मद साहब ने की आख्या, वो एक दिन फजर दी नमाज पढ़ी उन सारे ही मूर्ख दिखाई देने लग पे, तू अपनी नमाज कजा की, मेरे भी कजा की, इन्हां ते तरस करना चाहिए, तो मूर्ख कहन लग पे। आ चल के फिर पढ़ी है, तू अपनी भी कजा की, मेरी भी कजा की। इस तरह मैं देखदा 4-5 दिन कोई नाम जपदा है माड़ा जिहा कितरे रस आए, ओहदे नाल पैस करदा है, ओहदे नाल बह, ओहदे नाल गुथम गुथा, ओहदे नाल गुथम गुथा, समझ लो इहनूं पचिया कोई नहीं, हजम नहीं हो। जे को खावे जे को भुंचे तिसका होए उधारो, हजम भी करे। भोजन दी बुरकी पहले मुंह दे चाहुंदी है, स्वाद आ जाता है, पर ये अजे खून नहीं बने, अजे मांस नहीं बने, अजे शरीर दी शक्ति भी नहीं बनी, सिर्फ रस आया। ये जब अंदर जाएगी पचेगी उदो खून बनेगी, कुछ दिन बाद एकदम नहीं बनती, एकदम रस आ जाता है, एकदम खून नहीं बनता। रस ते उसे वक्त आ गया, भुख भी मिट जाती है, खून उस वक्त नहीं बनता, समा लगता है, वक्त लगता है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਤਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਉਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ ਨਿਮਕ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਛਿਨ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਚ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ, ਬਾਹਰ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਖਾਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਭਜਨ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਜਪ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋ ਕਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਬੁੰਚੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਔਖੀ ਏ, ਖਾਣੀ ਸੌਖੀ ਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਪਕਾਣੀ ਕਮਾਣੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਏ, ਖਾਣੀ ਔਖੀ। ਖਾਣਾ ਕੀ ਏ? ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਬੁੰਚੇ। ਖਾਣਾ ਕੀ ਏ? ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3: ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
2: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।
3: ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ
2: 604-351-5111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 604-351-5111 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
2: है। So the Musiala baby, yeah.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दी झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणा दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

क्या वाकई परमात्मा समझ दे चाह जांदा? कतई नहीं। अगर वो समझ दे चाह जांदा है तो मेरी समझ वड्डी है, परमात्मा वड्डा नहीं है। तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी ना। हे प्रभु, तू ते सागर दी तरह है, मेरी अकल मेरी समझ ते एक छोटा जिहा प्याला है। ये प्याले दी सागर किस तरह आएगा? लेकिन एक समझ मिलती है कि समझ समझ के ए समझ मिलती है, हे प्रभु मैं तेनु नहीं समझ सकता। क्यों? तू मेरी समझ तो वड्डा है। और समझ मुतासर हो जाती है, समझ प्रभावित हो जाती है, हिरदा याद करने लग पैंदा। जिन्ने चिर तक साड़ी अकल परमात्मा तो प्रभावित नहीं, हिरदा याद नहीं कर सकता। वाहेगुरु वाहेगुरु जबान करती रहेगी, याद नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। जो मेरी समझ दे च नहीं है, क्या समझ दे च आ जांदा है? नहीं। समझ समझ के ए समझ मिलती है कि मैं तेनू नहीं समझ सकता। मैं पढ़ रहा से एक दफा सुकरात दी आटो बायोग्राफी, उन्हें अपनी आप बीती लिखी है। कहिंदा है, जद मैं छोटा जिहा बच्चा सी, बच्चियां नाल खेड़दा सी, मैं अक्सर डींगा मारदा सी, मैं सब कुछ जानना। तुसी कुछ भी पुछो ते मैं दसांगा। कहिंदा बच्चियां दा मैं लीडर बने होया सी, नेता बने होया सी। बच्चे मैथों भयभीत होंदे सन, बच्चे मेरा रोब मनदे सन, बच्चियां दा मैं मुखी। कहिंदा जद मैं जवान होया तो फिर मैं ए कहना शुरू कीता, कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा। सारे सवालां दा जवाब नहीं देंगा, मैं सब कुछ नहीं जानदा। कहिंदा अज मैं बुढ़ा हो गया, ऐलानिया कहिंदा कि मैं कुछ भी नहीं जानदा। मैं जान जान के ए जाने है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, सोई अजान कहे मैं जाने आ, जानन हार न जाना छाना रे। ओही महामूरख है जेड़ा कहिंदा मैं सब कुछ जान ले, खाक जानेगा। ज्ञान दा ते सागर पिया है बार, तेरी अकल प्याला किस तरह भरेगी?

गया है। किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन, सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी, ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल। अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: कारण करना
1: हर सिमरन कियो सकल अकारा
0: हर सिमरन में आप निरंकारा
1: कर कृपा जिस आप बुझाया
0: नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक
1: दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ
0: शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी
1: जय मात पिता सुत मीत न पाई
0: मन उहां नाम तेरा संग सहाई
1: जय महा ध्यान दूत जम दलै
0: जय केवल नाम संग तेरा चलै
1: जय मुश्किल होवे अत भारी
0: हर को नाम खन माहे उधारी
1: अनक पुनः चरण करत नहीं तरै
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे
1: गुरमुख नाम जप मन मेरे
0: नानक पावो सुख कन्हेरे
1: सकल सृष्टि को राजा दुखिया
0: हर का नाम जपत होय सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन भरै
0: हर का नाम जपत निस्तरै
1: अनक माया रंग तिख न बुझावै
0: का नाम जब त्यागावे
1: ये मार्ग ये हो जात अकेला
0: तै हर नाम संग होत सुहेला
1: ऐसा नामवान सदा त्याई है
0: नानक गुरमुख परम गत पाई है
1: छूट तो नहीं कोट लख बाही
0: नाम जपत तै पार पराही
1: अनक बिघन जह आए संघार है
0: हर का नाम तत्काल उधार है
1: अनक जोन जन्म मर जाम
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: हो मैला मल कब हु न धोवे
0: हर का नाम कोट पाप खोवे
1: ऐसा नाम जपो मन रंग
0: नानक पाई है साधक संग
1: ये मार्ग के गन जाहे न पोसा
0: हर का नाम हां संग तोसा
1: ये पेंड अंत गुबारा
0: हर का नाम संग उजियारा
1: जहां पंथ तेरा को ना समझानू
0: हर का नाम तह नाल पछानू
1: जय महा भयान तप्त बहु काम
0: जय हर के नाम की तुम ऊपर शाम
1: जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ख
0: जय नानक हर हर अमृत बरख
1: भक्त जना की बर्तन नाम
0: संत जना के मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओट
0: हर के नाम उदरे जन कोट
1: हर जस करत संत दिन रात
0: हर हर औखद साध कमात
1: हर जन कह हर नाम निधान
0: और ब्रह्म जन कीनो दान
1: मन तन रंग रते रंग एक
0: नानक जन कै व्रत भविक
1: हर का नाम जन को मुक्त जुगत
0: हर कै नाम जन को तृप्त भुगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग
0: हर नाम जपत कब परे न भंग
1: हर का नाम जन की वटियाई
0: हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोग जोग
0: हर नाम जपत कछ नहि बियोग
1: जन रासा हर नाम की सेवा
0: नानक पूजे हर हर देवा
1: हर हर जन कै मालिक दीना
0: हर तन जन को आ प्रभु दीना
1: हर हर जन कै ओट स्थानी
0: हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत ओत जन हर रस राते
0: सुन समाध नाम रस माते
1: आठ हर जन हर हर जपै
0: हर का भगत प्रकट नहीं छपै
1: हर की भक्त मुक्त बहु करे
0: नानक जन संग के ते तरे
1: बार जात हो हर को नाम
0: राम तेन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा
0: नाम सुनत दर्द दुख लथा
1: नाम की महिमा संतरित बसै
0: संत प्रताप दुर्द सब नसै
1: संत का संग वट भागी पाई है
0: संत की सेवा नाम ते आई है
1: नाम तोल कश अवर न होए
0: नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक
1: बहु शास्त्र बहु सिमृति पेख सर्व टंडोल
0: पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी
1: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान
0: शस्त्र सिमृत व्याख्यान
1: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया
0: सकल त्याग बन मध्य फिरिया
1: अनक प्रकार किए बहु जतना
0: उन दान हूँ मैं बहु रतना
1: शरीर कटाए हूँ मैं कर राती
0: वर्त नेम करे बहु भाती
1: नहीं तुल राम नाम विचार
0: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
1: नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव
0: महा उदास तपी सरथी वै
1: अगन माहे हुमत पुराण
0: कनक हसब है भरपूर दान
1: न्यवली कर्म करे बहु आसन
0: जैन मार्ग संजम साधन
1: निम्क निम्क कर शरीर कटावे
0: तो भी हम मैं मैल न जावे
1: हर के नाम सम सरकश नाहे
0: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे
1: मन कामना तीर्थ देश छुटे
0: गर्भ गुमान न मन ते हुटे
1: सोच करे दिन सर रात
0: मन की मैल न तन ते जावे
1: इस देही को बहु साधना करे
0: मन ते कबहु न दुखिया तरे
1: जल धोवे बहु देह अनीत
0: कहा होए कची भीत
1: मन हर के नाम की महिमा ऊच
0: नानक नाम उदरे पतत बहमूच
1: बहुत सियाणप जमका भव व्यापे
0: अनक जतन कर तृष्ण ना त्रापे
1: एक अनेक अगन नहीं बुझे
0: ओटो पावदर गैने सिजै
1: छूट सुनाही ऊप पयाल
0: मोहे व्यापे माया जाल
1: अवर करतूत सगली जम डाने
0: गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने
1: हर का नाम जब तो दुख जाए
0: नानक बोले सहज सुभाए
1: चार पदार्थ जे को मांगे
0: साध जना की सेवा लागे
1: जे को अपना दुख मिटावे
0: हर हर नाम रदा सदगावे
1: जे को अपनी शोभा लोरे
0: साध संगे हम मैं शोरे
1: जे को जन्म मरण ते डरे
0: साध जना की शरणी परे
1: जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा
0: नानक ताके बल बल जासा
1: सगल पुरख में पुरख प्रधान
0: साध संग जाका मिटे अपमान
1: आप सुखो जो जाने नीचा
0: सहु गनिया सब ते ऊंचा
1: जाका मन होए सकल की रीना
0: हर हर नाम तिन कट कट चीना
1: मारे अपने ते बुरा मिटाना
0: देखा सकल सृष्ट साजना
1: सुख दुख जन सम दृष्टिता
0: नानक पाप पुन नहीं लेपा
1: निर्धन को धन तेरो नाओ
0: निथावे कौन तेरा था
1: नमाने को प्रभु तेरो मान
0: सकल घटाको देवो दान
1: कर्म करावन हार स्वामी
0: सकल घटाके अंतर जामी
1: अपनी गतमित जानो आपे
0: आपन संग आप प्रभु राते
1: तुमरी उस्तत तुम ते
0: नानक अवर न जान सकोए
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
0: साध संग दुर्मत मल हरिया
1: सगल उद्यम में उत्तम भला
0: हर का नाम जपो।

0: नानक कहूं नसी जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस वसूले पाछे पावे,
0: एक वस्त कारण बिखो टकवावे,
1: एक पीना दे दस पी हिरले,
0: दो मूड़ा को कहां करे,
1: जिस ठाकुर से ना ही चारा,
0: ताको की जय सद नमस्कार,
1: जाते मन लगा प्रमीठा,
0: सर्व सुखता हूँ मन बुठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्व सुख नानक तिन पाया,
1: अगंत शाह अपनी दे रास,
0: हाथ पीत बरते अनंत उलास,
1: अपनी ईमान कश बहो शाह होले,
0: अज्ञानी मन रोस करे,
1: अपनी प्रतीत आप ही घोवे,
0: और उसका विश्वास न हो,
1: बस्ते सागर रख है,
0: रोकी आज्ञा मन है मथ,
1: उसके चौगन करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: नानक पात माया के हित,
0: सर पर होवत जान अनेत,
1: बिरख की छाया से रंग लावे,
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे,
1: जो दी सह सो चालन हार,
0: लपट रहे होते अंधे अंधार,
1: घटाउ से जो लावे नेह,
0: ताको हाथ न आवे के,
1: मन हर के नाम की प्री सुखदाई,
0: कर कृपा नानक आप ले लाई,
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया,
0: मिथ्या होम ममता माया,
1: मिथ्या राज जोगन धन माल,
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
1: मिथ्या हस्ती असु वस्त्रा,
0: मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता,
1: मिथ्या त्रो मोह अभिमान,
0: मिथ्या आप से ऊपर कर्त गुमान,
1: सिर भक्त साध की शरण,
0: नानक जप जप जीव हर के चरण,
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है,
0: मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरे,
1: मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रिया रूपाद,
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,
1: मिथ्या जन्म पर विकार को तावहे,
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे,
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा,
0: मिथ्या बास लेत बिकारा,
1: बिन बूझे मिथ्या सब भये,
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये,
1: वृत्ति साक्त की आरजा,
0: साच बिना कह होत सुचा,
1: बिरथा नाम बिना तर अंध,
0: मुखे आवतता कह दुर्गंध,
1: बिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाए,
0: एक बिना ज्यों खेती जाए,
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम,
0: कृपन के निरार्थ दाम,
1: धन तन तेजन दे कट बस्यो हर नाऊ,
0: नानक ताके बल बल जाओ,
1: रहते अवर कश अवर कमावत,
0: मन ही प्रीत मुखों गंड लावत,
1: जानन हार प्रभु प्रवीण,
0: बाहर पीक न काहू भीन,
1: अवर उपदेश है आप न करे,
0: आवत जावत जन में मरे,
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप,
0: जिसकी सीख तरह संसार,
1: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता,
0: नानक निजन चरण पराता,
1: करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने,
0: अपना किया आपे मन,
1: आप करत नबेरा,
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा,
1: पाप से अनप सकल ते रहत,
0: सब कछ जाने आत्म की राहत,
1: जिस भावे तिस लये लड़ लाए,
0: शांत अनंतर रहा समाए,
1: सो सेवक जिस कृपा करी,
0: निमक निमक जप नानक हरी श्लोक,
1: काम क्रोध अर लोभ मोह तिस जाए अहनेव,
0: नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी।
1: जे प्रसाद छत्ती ही अमृत खाहे,
0: जिस ठाकुर को रख मन माहे,
1: जे प्रसाद सुगंधित तन लावहे,
0: जिसको सिमृत परम गत पावे,
1: जे प्रसाद बसे सुख मंदर,
0: चहते आये सदा मन अंदर,
1: जे प्रसाद गृह संग सुख बसना,
0: आठ पहर सिमरोत सरसना,
1: जे प्रसाद रंग रस भोग,
0: नानक सदा ते आये ते हमन जोग,
1: जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावहे,
0: जिसे त्यागत अवर लुभावे,
1: जे प्रसाद सुख सेज सोई जय,
0: मन आठ पहर ताका जस कवि जय,
1: जे प्रसाद तुल सब पू मान,
0: मुक्ता को जस रसन बखाना,
1: जे प्रसाद तेरो रहता धर्म,
0: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म,
1: रब जी जपत दरगाह मान पावहे,
0: नानक पत से ती कर जावे,
1: जे प्रसाद अरो कंचन देही,
0: निबला बोत सराम स्नेही,
1: जे प्रसाद तेरा ओला रहत,
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत,
1: जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके,
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके,
1: जे प्रसाद तुझ को न पहुंचे,
0: मन साल साल सिमरो प्रभ उचे,
1: जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे,
0: नानक ताकी भगत करे,
1: जे प्रसाद अभूखन पहरीजे,
0: मन तिस सिमरत क्यों आलस की जाए,
1: जे प्रसाद असवस्त सवारी,
0: मन तिस प्रभ को कभु न बिसारी,
1: जे प्रसाद बाग मिलख तना,
0: राग प्रे प्रभ अपने मना,
1: जिन तेरी मन बंत बनाई,
0: उठत बैठ सत्य सह ध्याई,
1: इसे ध्याई जो एक लख है,
0: यहाँ उहा नानक तेरी रख है,
1: जे प्रसाद करहे पुन बहुदान,
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान,
1: जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी,
0: इस प्रभ को सास सास तारी,
1: जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
0: सो प्रभ सिमरो सदा अनूप,
1: जे प्रसाद तेरी नीकी जात,
0: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात,
1: जे प्रसाद तेरी पत रहै,
0: गुर प्रसाद नानक जस कहे,
1: जे प्रसाद सुनहे कर्ण नाद,
0: जे प्रसाद पेखे विस्माद,
1: जे प्रसाद बोलहे अमृत रसना,
0: जे प्रसाद सुख सहजे वसना,
1: जे प्रसाद हस्त कर चलहे,
0: जे प्रसाद संपूर्ण फल है,
1: जे प्रसाद परम गत पावहे,
0: जे प्रसाद सुख सहज समावे,
1: ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो हो,
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो,
1: जे प्रसाद तू प्रकट संसार,
0: इस प्रभ को मूल न मनो विसार,
1: जे प्रसाद तेरा प्रताप,
0: जे मन मूढ़ तू ताको जाप,
1: जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे,
0: जिसे जान मन सदा हजूरे,
1: जे प्रसाद तू पावहे साच,
0: जे मन मेरे तू ता राज,
1: जे प्रसाद सबकी गत होए,
0: नानक जाप जपे जप सोए,
1: आप जपाई जपे सोनाओ,
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ,
1: प्रभ कृपाते होए प्रकाश,
0: प्रभु दयाते कमल विगास,
1: प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए,
0: प्रभ दयाते मत उत्तम होए,
1: सर्वन धन प्रभ तेरी मया,
0: आपो कछु न किन्हु लया,
1: जित जित लाभ हो तित लगे हर नाथ,
0: नानक इनके कछु न हाथ, श्लोक
1: अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह समुखता होए।
0: सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी
1: साध का संग मुख उजल होत,
0: साध संग मन सगली खोत,
1: साध का संग मिटे अभिमान,
0: साध का संग प्रकट है सुज्ञान,
1: साध का संग बुझे प्रभ नीरा,
0: साध संग सब होत नबेरा,
1: साध का संग पाए नाम रतन,
0: साध का संग एक ऊपर जतन,
1: साध की महिमा वर्णे कौन पुरानी,
0: नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी,
1: साध का संग अगोचर मिले,
0: साध का संग सदा प्रफुल्ल,
1: साध का संग आवे बस पंचा,
0: साध संग अमृत रस पुंचा,
1: साध संग होय सब पी रेन,
0: साध का संग मनोहर बैन,
1: साध का संग न कथू पावे,
0: साध संग अस्तित्व मन पावे,
1: साध का संग माया ते भिन्न,
0: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न,
1: साध संग दुश्मन सब मीत,
0: साधु का संग महापुनीत,
1: साध संग किस्सो नी बैर,
0: साध का संग न बीगा पैर,
1: साध का संग नाही को मंदा,
0: साध संग जाने परमानंदा,
1: साध का संग नाही हों ताप,
0: साध का संग जैसा व्याप,
1: आपे जाने साध पढ़ाई,
0: नानक साध प्रभु बने आई,
1: साध का संग न कभू पावे,
0: साध का संग सदा सुख पावे,
1: साध संग बस अगोचर लह,
0: साधु का संग अजर सह,
1: साध का संग बस है थान ऊंचे,
0: साधु का संग महर पहुंचे,
1: साध का संग दृढ़ सब धर्म,
0: साध का संग केवल पार ब्रह्म,
1: साध का संग पाए नाम निधान,
0: नानक साधु के कुर्बान,
1: साध का संग सब कुल उधार है,
0: साध संग साधन बीत कुटम निस्तार है,
1: साधु का संग सो धन पावे,
0: जिस धन ते सब को बरसावे,
1: साध संग धर्म राय करे सेवा,
0: साध का संग सो बासुर देवा,
1: साधु का संग पाप पलायन,
0: साध संग अमृत गुण गायन,
1: साध का संग सर्प थान गम,
0: नानक साध का संग सकल जनम,
1: साध का संग नहीं कशकाल,
0: दर्शन भेट होत नहाल,
1: साध का संग कुलूकत हर है,
0: साध का संग नरक पर हर है,
1: साध का संग इहा उहा सुहेला,
0: साध संग विश्वत हर मेला,
1: जो इच्छा सोई फल पावे,
0: साध के संग न बिरथा जावे,
1: पार ब्रह्म साध रित बसे,
0: नानक कुदरे साध सुन रसे,
1: साध के संग सुनो हर नाव,
0: साध संग हर के गुण गाओ,
1: साध के संग न मन ते बिसरे,
0: साध संग सर परमेश्वर है,
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
0: साधु के संग करकट जीठा,
1: साध संग भय आज्ञाकारी,
0: साध संगत भई हमारी,
1: साध के संग मिटे सब रोग,
0: नानक साध भेटे संजोग,
1: साध की महिमा वेद न जाने हैं,
0: जिता सुन तेता बखियान,
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर,
0: साध की उपमा रही भरपूर,
1: साध की शोभा का नाही अंत,
0: साध की शोभा सदा बेअंत,
1: साध की शोभा ऊंचते ऊंची,
0: साध की शोभा मूचते मूची,
1: साध की शोभा साध बनाई,
0: नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक,
1: मन साचा मुख साचा सोए,
0: अवर न पेखे कस बिन कोए,
1: नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए।
0: अष्टपदी
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप,
0: जैसे जल में कमल लेप,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक,
0: जैसे सूर सर्व को सुख,
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान,
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के तीर एक,
0: ज्यो बसदा को खुद को चिंदन ले,
1: ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाओ,
0: नानक ज्यो भाव का सह स्वभाव,
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला,
0: जैसे मैल न लागे जला,
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश,
0: जैसे तर ऊपर आकाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान,
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा,
0: मन अपने है सबते नीचा,
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये,
0: नानक जिन प्रभ आप करे,
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना,
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना,
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी,
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता,
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह,
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा,
0: ब्रह्म ज्ञानी दे तावत बंदा,
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला,
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला,
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार,
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत,
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत,
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कर सदा आनंद,
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता,
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत,
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बरबल जाइए,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगलवान माहे,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने थे,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान है,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार,
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार,
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक,
1: और तारै जो अंतर नाम, सर्व में देखे पकवान, निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अप परस सगल ने सतारे अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्स
1: क्षत्रिया रूप न देखे नेत्र
0: साधक टहल संत संग हेत
1: कर्णन सुने काहू की निंदा
0: सबते जाने आपस को मंदा
1: और प्रसाद मिथ्या पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वैने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंश
0: केवल भगत कीर्तन संग रच
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावे
0: नानको वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन से बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्प विष्ण प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
0: राम नाम आत्म सुद है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मैं जाने स्थूल
1: वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उरता रहे
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: ज्ञान रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कित न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगा परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोजी पर
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: सब की आज्ञा आत्म हिता वै
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हक तैसा उस होग
0: सदा अनंत नहीं बियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिकाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताये साई जुगत
0: नानको प्रख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
0: जित जित कर रखे तैसा तिन नाम
1: आपे कर्म करावन जोग
0: भावे सो ही फन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लख न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहुविद्यनक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट भय तीर्थ वासी
0: कई कोट मन प्रमे उदासी
1: कई कोट वेद के स्रोते
0: कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारे
0: कई कोट कब काव विचारे
1: कई कोट नवतन नाम त्या वहे
0: नान करते का अंत न पावे
1: कई कोट भय अभिमानी
0: कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर
0: कई कोट अपिक आत्म ने को
1: कई कोट पर दर्प को हिरहे
0: कई कोट पर दुख न करे
1: कई कोट माया श्रम माहे
0: कई कोट पर देश परमा है
1: जित जित लाभ होते तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए
0: कई कोट पात्र बृख न बजाए
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर
0: कई कोट देश भूमंडल
1: कई कोट शशि सूर नक्षत्र
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र
1: सगल समग्री अपने सूत धार
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है
1: कई कोट राजस ताम सातक
0: कई कोट वेद प्राण स्मृति अर्शास्त्र
1: कई कोट की रतन सुमुंद
0: कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट की ये चिर दीवे
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
1: कई कोट जख के निर्पसाच
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर
0: नानक आप लिपत रहा प्रभूर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है
0: कई कोट बहुत जोनी फिर
1: कई कोट बैठ सही खाहे
0: कई कोट काल थक पाहे
1: कई कोट की ये धनवंत
0: कई कोट मैं चिंत
1: जय जय भाणा तह तह राखे
0: नानक सब कुछ प्रभ के हाथे
1: कई कोट भय वैरागी
0: राम नाम संग तिन लिव लागी
1: कई कोट प्रभ को खोजंते
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्रभ्यास
0: जिनको मिले प्रभ विनाश
1: कई कोट मांग है सत्संग
0: पार ब्रह्म तिन लागा रंग
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न
0: नानक तेजन सदा धन धन
1: कई कोट खानी अरखंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जग की नु विस्तार
1: कई बार पसरियो पासार
0: सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट कीने बहु भांत
0: प्राप्त होए प्रभ महे समात
1: ताका अंत न जाने कोई
0: आपे आप नानक प्रभ सोए
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास
0: जिनहो वत्या तुम प्रगास
1: कई कोट तत्व के देते
0: सदन हर एको नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीव है
0: अमर भय सद सद ही जीव है
1: कई कोट नाम गुण गाव है
0: आत्म रस सुख सह समावे
1: अपने जन को साथ साथ संभारी
0: नानक ए परमेश्वर के प्यारे श्लोक
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाहीं कोई
0: नानक तिस बलहार ने ਜਲ ਥਲ ਮਈ ਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ
1: ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਪ ਥਾਪ ਨਹਾਰਾ
0: ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਵਾਰਾ ਵਾਰਾ
1: ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ
0: ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ
1: ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਹੁਕਮੇ ਐਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ
1: ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਮਨੋ ਗਤ ਪਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਉਧਾਰੈ
0: ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ
1: ਦੋਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ
0: ਖੇਲੈ ਵਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
1: ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ
0: ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰਨ ਆਵੈ
1: ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ
1: ਕਿਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਪਿਛਲੇ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ
1: ਮਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿਰਚੈ
0: ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ
1: ਭਰਮੇ ਭੁੱਲੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ
0: ਨਮਕ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰ ਆਵੈ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ
0: ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ
1: ਛਿਣਵੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ
0: ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ
1: ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ
0: ਇਸ ਤਰਕਾਲ ਦਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼
0: ਨਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੇ ਜਗਦੀਸ਼
1: ਜੀਰੋ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ
0: ਕਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ
1: ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾ ਹੀ ਸਹਾ
0: ਕਲ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ
1: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ
0: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫਨ ਥੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹੱਸੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਊਬਕ ਆਸ ਪਿਆਲ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਮਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ
1: ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਪੀਠ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ
0: ਅਨਕ ਜੋਨ ਪਰਮੈ ਪਰਮੀਆ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ
0: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨ ਚਾਵੈ
1: ਜੋ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਹੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੋਰ ਨ ਆਵੈ
1: ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼
1: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਬਸੈ ਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ
0: ਜੋ ਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ
1: ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ
1: ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀ

0: ज्येष्ठपदी
1: जिसके अंतरराज अभिमान
0: सो नरकपाति होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: पाप को कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भो जो परमावे
1: धन ओम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नान की है मुक्ति अज्ञा सुख पावे
1: धनवंता हुए कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आपस को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट में आवे
1: सर्व की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: तब इस को सुख नाही कोई
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्मराय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु प्रसाद नानक हो छुटे
1: सहस कटे लख कोट पावे
0: रत्न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विद्या के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजै
0: सुपन मनोरथ फिर थे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: भागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: तब ते दूर सब हूं कै संग
1: दूजे देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रटिया सबके साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पुस्ते भिन्न कहो किश होए
0: अंत नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करना हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदै के बिरले जीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घट घट सुनी सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन हार जा कटै
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटै
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत हो हे मलीन
0: संत का दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करै
0: नानक संत संग निंदक भी तर
1: संत के दुखन ते मुख पवै
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवै
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा मह जलै
0: संत का दुखन सब को छलै
1: संत का दुखन तेज सब जाए
0: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी गत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अर्दीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा विजोग
1: संत के निंदा दुख मैं दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊ
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी कित काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान भरमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते सोथा
0: सास बिना मृतक की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही
0: अपन बीजिया पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रख नहार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इउ बिल लाए
0: ज्यो जल बे होन मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजै
0: ज्यो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटै अकेला
0: ज्यो बवार तिर खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दुखा धुर ही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइय
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइय
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टै कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटै कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर तिसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्यावो सास ग्रास
1: सब कछ वर्तै तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: किसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राई
0: एक आस हर मन रखो ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਨਿਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਔਰ ਨ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ
1: ਇਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਪੇਖਾ ਪੁਰਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਵੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੇ ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋ ਜੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਹਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਜਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੁਝਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਸ਼ ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
1: ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ
0: ਅਨਕ ਜੁਗ ਤਰਚ ਥਾ ਬਿਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲੱਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂੰ ਬਣਿਆ

0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਟੂਟੀ ਗੰਢ ਨਿਹਾਰ ਗੋਪਾਲ
0: ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪਤਪਾਲ
1: ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੀ
0: ਇਸਦੇ ਵਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ
1: ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ
1: ਆਪਣ ਕੀ ਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਏ
0: ਜਿਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ
1: ਜਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ
0: ਰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘੱਟ ਸੋ ਹੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਘੋਬਰ ਪੈ
0: ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸਕਾ ਦੀ ਆਧਰ ਪੈ
1: ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾ ਤਾਰ
0: ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਂ ਨੈਗਾ ਵਾਰ
1: ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹੋ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾਇਆ ਰੋਗ
1: ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ
0: ਜਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ
1: ਜਿਉਂ ਪਾਖਾਨ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਤਰੈ
0: ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰਕਤ ਨਿਸਤਰੈ
1: ਜਿਉਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ
1: ਜਿਉਂ ਮਹਾਂ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ
0: ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋਂ ਧੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ
1: ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂਤ ਸਹਿ ਚਤਾਰ
1: ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ
0: ਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ
1: ਕੌਣ ਬਸਤੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ
0: ਲਪਟ ਰਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਪਤਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਹੀ
1: ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ
1: ਅਜ ਭਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋ
1: ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਚਾਲ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਖਿਆ ਜੰਜਾਲ
1: ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ
0: ਮੁਖੋ ਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ
1: ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਤਿਵਰ ਹਾਰ ਹੈ
1: ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ
0: ਹਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ
1: ਅੰਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ
0: ਅਰਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮਰ ਤਰਸ ਚੱਖੈ
1: ਓਟ ਗਈ ਸੰਤ ਅੰਦਰ ਆਇਆ
0: ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ
1: ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲਨ ਹਾਰ
0: ਭੁਖੇ ਕੋ ਦੇਵ ਤੇ ਆਧਾਰ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ
1: ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਜਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਗ
1: ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ
0: ਭਗਤੀ ਉਜ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ
1: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
1: ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ
0: ਜਿਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਆਂ ਤਿਹ ਲੋਏ
0: ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਇਕੋ ਹੋਏ
1: ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ
0: ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ
1: ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ
0: ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ
1: ਰੂਪ ਨਰੇਖ ਨਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ
0: ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ
0: ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ
1: ਇਸਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਇਕੋ ਸੋਏ
1: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ
0: ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
1: ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹ ਨਰਾਉ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋ
1: ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਫੋਰ
0: ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ
1: ਹੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਂ ਕੈ
0: ਸਰਵ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ
1: ਰਾਜ ਮਹਿਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ
0: ਅਪਮੈ ਤਪੀਸਰ ਕ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ
1: ਧਿਆਈ ਧਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
0: ਨਾਨਕ ਦਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ
1: ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ
0: ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ
0: ਸਗਲ ਪਰੋਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
1: ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ
0: ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਦੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਮਾਏ
0: ਜਨਮ ਰੈਫਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
1: ਪੂਜ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ
0: ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੇ ਇਕ ਰੰਗ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਾਰ
0: ਰੱਬ ਬਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਕਿਨ ਮਾਹੀ
0: ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰਬੰਤ ਬਨਾਈ
0: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਰ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ
0: ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਨ ਸਰਵਣ
1: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ
0: ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਹੇ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ
0: ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
1: ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ
0: ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ
0: ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
1: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼
0: ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ
0: ਨਾਮ ਜਬਰਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਫ਼ ਸੋ ਕਰਨਾ ਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
1: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀ ਆ
0: ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ
0: ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
1: ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ
0: ਵਰਕੇ ਵਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ
0: ਜਾਕੇ ਸੰਗ ਧਰੈ ਸੰਸਾਰ
1: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਟ ਭਾਗੀ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ
1: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ
0: ਪੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸਨ ਹਾਰ
0: ਪੂਜਾ ਸਤ सत सेवदार
1: दर्शन सत सत एक नहार
0: नाम सत सत ध्यान हार
1: आप सत सत सब धारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजन हार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: मन करावन तिन मूल पछाने
1: जाके हृदय विश्वास प्रभाया
0: तत ज्ञान ते समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजे ते समाहे समाना
1: बस माहे ले बस कटाई
0: ताको भिन्न न कहना जाई
1: पूजय भुजन हार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभ पालन हारा
0: सेवक की रख निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभ धारा
0: नानक सो सेवक सास सास समार
1: अपने जान का पर्दा ढक है
0: अपने सेवक की सर पर रख है
1: अपने दास को देव डाई
0: अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आप पत रख है
0: ताकि कदमित कोई न लख है
1: रब के सेवक को न पहुंचे
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख है
0: भस्म करे लस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काट ते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव वृथे जात
1: मारा न रखे अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभ लख बडाणी
1: बारंबार बार प्रभ जपी है
0: अमृत मन तन तरपी है
1: नाम रतन जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न ही दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नाम में नाम समाने
1: ऊर्त बैठ शोभत नाम
0: रहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रब अपने जन कीनी दात
1: करे भक्त आत्म कह चाहे
0: रब अपने से रहे समाये
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रब अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण क्या एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: रहो नानक से जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट ले
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: इसकी शरण सर्व सुख पावे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अब सियानक सगली छाड़
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरुख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिखी उदर है नानक हर गुण गा अष्टपदी
1: सतगुर से की करे प्रतपाल
0: सेवक गुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुर्मत मल हिरे
0: गुर बचनी हर नाम उचरे
1: सतगुर सिख के बंधन काटे
0: का सिख वकार ते हट
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख वट भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समार
1: गुर के गृह सेवक जो रह
0: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आप उसको कर कष न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्याव
1: मन बेचा सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत हो निकामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्व गुर का मन मान
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हरना
0: नानक बार गुर कौबल जाओ
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कश भरम
1: सह सियान पलया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरवट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: दर्शत चरणगत निर्मल रीत
1: देखत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगह गवे
1: सुनकर वचन करन आगाने
0: मन संतोखा तंपतिया ने
1: पूरा गुर अक्यो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्ट पे कहे हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भाव दिस लय मिलाए
1: वाहे कुशत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: काहूं बोल न पहुंचत पुरानी
0: अगमा गोचर प्रभ निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंधन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतपुरे अपने
0: नानक जिस पर सादा सा प्रभ जपने
1: यो हर रस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टे गुणता
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक भरम बहु दुख ते नासे
1: सत माही ठांड बरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: हो चुका निरपो होए बसे
0: सगल व्याद मन ते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: चित पाई चूके भ्रम गमन
0: सो नानक हर हर जस सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जिन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभ आप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर गन दूजा नाही कोई
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रव्या रूप रंग
0: प्रकाश साधक संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चल बिन भजन दिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी।
1: संत जना मिल करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अवरो पाप समीत बसारो,
0: चरण कमल रिद मैं उर तारो,
1: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ,
0: निरकर गह नाम हर वथ,
1: एहु तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार कुंट उठता वही,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अनक उपावी रोग न जाये,
0: रोग मिटे हर अवखद लाये,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगाह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: वैद्य स्थापते बैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: और बिन सह पूर्ण हो आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाये बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: सत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मर सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: क्यों रत्न जन्म का होई उदार,
0: हर हर सिमर पुराने आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करो मन लाए,
0: मन वंशित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: काल पटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटुंब हर बनिता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू ले जियाने,
0: भक्त बिना बहु डूबे सियाने,
1: हर की भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत,
1: चरण कमल रखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहि,
1: आप जपो अबरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार पूर सत हर को नाओ,
0: सह सबाय नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: बिनस जाय हो मैं बिख फैल,
1: होए अचिंत बसे सुख नाल,
0: सास ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सच तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: निहं सुख दरगह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: कहो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जप एको सलाह,
0: एक समर एको मन आहे,
1: एक सके गुण गाओ अनंत,
0: मंत्र जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे प्रव्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक आराध प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ की गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें त्यागो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: करो प्रभ की नित नीत,
1: एक ओट एक आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महासुख होए,
0: रस पावे बिरला कोई,
1: इन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: जय चाहो साधक संग,
1: परे शरण आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन विलाग,
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सोए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुरु दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: किछ पुन्नी सरदा सा पूरी,
0: रब रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भगती नाम समाये,
1: सो क्यों बिसरे जे काल न पाने,
0: सो क्यों बिसरे जे किया जाने,
1: सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया,
0: सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया,
1: सो क्यों बिसरे जे अग्न मह राखै,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सो क्यों बिसरे जे बिख ते काटै,
0: जनम जनम का टूटा गंढ है,
1: गुर पूरा तत एह बुझाया,
0: रब अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अबरे नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिय संसार,
0: भगती तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निद नाम,
0: मूढ़त जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का होवत नास,
0: नानक नाम जपो गुण पास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाओ,
1: नेत्रों देख दर्श सुख होए,
0: मन बिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: अल्लाह को पावे संग,
1: एक बस दीजै करमया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाये,
1: रब बख्शांत दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: हाथ पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो होई पुनीत,
0: भक्त पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी सरन पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी शोभा धनवंत,
0: हृदय वसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संग प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक प्रगास, श्लोक
1: सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप,
0: आपन किया नानका, आप ही फिर जाप, अष्टपदी
1: जब अकार एहो कछ ना दिष्टेता,
0: पापन तब कहते के होता।
1: जब भारी आपन सुन समाध
0: बैर विरोध के संग कमात,
1: जब इसका वर्ण चेहन न जापत,
0: हर किसो को किसे व्यापत,
1: जब आपन आप आपार ब्रह्म,
0: मोह कहा किस होवत परम,
1: आपन खेल आप वर्ती जा,
0: नान करने हार न दूजा,
1: जब होवत परम केवल धनी,
0: जब बंद मुगत कहो किसको गनी,
1: जब एक ही हर अगम अपार,
0: जब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार,
1: जब निर्गुण प्रभ सह सुपाई,
0: जब शिव शक्त कहो हित ठाए,
1: जब आप ही आप अपनी ज्योत धरे,
0: जब कवन न डर कवन कत डरे,
1: आपन चलित आप करने हार,
0: नानक ठाकुर एक में पार,
1: अवनाशी सुख आपन आसन,
0: तब जन्म मरण कहो कहा विनाशन,
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए,
0: तब जम की त्रास कहो किस होए,
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका,
0: तब चित्र गुप्त किस पुष्ट लेखा,
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे,
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे,
1: आपन आप ही अचरजा,
0: नानक आपन रूप आप ही उपरजा,
1: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता,
0: जय बिन मैल कहो क्या तोता,
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
0: जय कौन कमान कौन अपमान,
1: जय स्वरूप केवल जगदीश,
0: जय शल छिद्र लगत कहो कीस,
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे,
0: जय किसे भूख कवन तृप्तावे,
1: कर्ण करावन करने हार,
0: नानक करते का नहे सुमार,
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई,
0: तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई,
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण,
0: जय वेद देव कहा को चीन,
1: जब अपन आप उतार है,
0: शगन अपशगन कहा विचार है,
1: जय आपन ऊंच आपन आप नेरा,
0: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा,
1: विस्मन विस्म रहे विस्माद,
0: नानक अपनी गत जान हो,
1: जय छल शेर अभेद समाया,
0: वहाँ कसे व्यापत माया,
1: आप उसको आप आदेश,
0: गुण का ना ही प्रवेश,
1: जय एक ही एक एक भगवंता,
0: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता,
1: जय आपन आप आप पतियारा,
0: जय कौन कथे कौन सुनने हारा,
1: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा,
0: नानक आप उसको आपे पहुँचा,
1: जय आप रचिय प्रपंच आकार,
0: गुण मैं की नो विस्तार,
1: पाप पुन तह पही कहावत,
0: ओ नरक को स्वर्ग विषावत,
1: काल जाल माया जंजाल,
0: मैं मोह परम पै भार,
1: दुख सुख मान अपमान,
0: अनक प्रकार की उपख्यान,
1: अपन खेल आप कर देखे,
0: खेल संकोच तो नानक एक,
1: जय अवगत भगत है आप,
0: जय पसर पसार संत प्रताप,
1: तुम पाप का आप ही धनी,
0: उनकी शोभा उन्हों बनी,
1: आपे कौतक करे अनब जोज,
0: आपे रस भोग निर्जोग,
1: जिस भावे तिस आपन नाई लावे,
0: जिस भावे तिस खेल खिलावे,
1: बेशुमार अथाह अगंत अतुल,
0: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक
1: जी जंत्र के ठाकुरा आपे वर्तन हार,
0: नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार, अष्टपदी
1: आप कथे आप सुनने हार,
0: आपे एक आप विस्तार,
1: जांत स्वभावे तां श्रेष्ठ उपाय,
0: अपने भाने लय समाये,
1: तुम ते भिन्न नहीं किश होए,
0: अपन सूत सब जगत परोए,
1: जाको प्राप्ति आप बुझाए,
0: सच नाम सोई जन पाए,
1: सो समदर्शी तत् का बेता,
0: नानक सगल श्रेष्ठ का जेता,
1: जी जंत्र सब तां कै हाथ,
0: दीन दयाल अनाथ को नाथ,
1: जिस राखे तिस को नमर,
0: सो मुह आज समनो बिसारे,
1: तिस सच अवर कहां को जाए,
0: सब सिर एक निरंजन राय,
1: की जुक्त जा कै सब हाथ,
0: अंतर बाहर जान साथ,
1: गुण निधान बेअंत अपार,
0: नानक दास सदा बलहार,
1: पूर्ण पूर रहे दयाल,
0: सब पर हो वित कृपा,
1: अपने कर्तव्य जाने आप,
0: अंतर जामी रहो व्याप,
1: प्रत पाले जी अनुभव भांत,
0: जो जो रचियो सो तिसे त्यात,
1: जिस भावे तिस लय मिलाए,
0: भगत करे हर के गुण गाए,
1: मन अंतर विश्वास कर मनिया,
0: करन हार नानक एक जाने,
1: जन लागा हर एक कै नाई,
0: जिसकी आस न वृद्धि जाए,
1: सेवक को सेवा बन आई,
0: हुकम बूझ परम पद पाई,
1: इसके ऊपर नहीं भी चार,
0: जाके मन बसया निरंकार,
1: बंधन तोर भय निर्वैर,
0: अनदिन पूजा गुर के पैर,
1: हे लोग सुखी है परलोक सुहेले,
0: नानक हर प्रभ आपे मेले,
1: साथ संग मिल करो आनंद,
0: उनका वो प्रभ परमानंद,
1: राम नाम तत् करो विचार,
0: दुर्लभ देखा करो उदार,
1: अमृत वचन हर के गुण गाओ,
0: प्राण तरन का यह स्वाव,
1: आठ पैर प्रभ खो नेरा,
0: हटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा,
1: उपदेश हृदय बसावो,
0: मन इच्छे नानक फल पावो,
1: हलत पलत दोए लेहो सवार,
0: राम नाम अंतर उतार,
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया,
0: मन बसे ते साच परीखिया,
1: मन तर नाम जपो लिबलाए,
0: दुख दर्द मन ते पाओ जाए,
1: सच व्यापार करो व्यापारी,
0: दरगह निभे खेप तुम्हारी,
1: एक टेक रखो मन माहे,
0: नानक बहुर न आवे जाहे,
1: इससे दूर कहाँ को जाए,
0: उबरे राखन हार ते आए,
1: निर भव जपै सकल भव मिटे,
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे,
1: जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख,
0: नाम जपत मन होवत सुख,
1: चिंता जाए मिटे हंकार,
0: इस जन को कोई न पहुंचन हार,
1: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा,
0: नानक ताके कार्य पूरा,
1: मत पूरी अमृत जानकी दृष्ट,
0: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट,
1: चरण कमल जाके अनूप,
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: भान सेवा सेवक परवान,
0: अंतर जामी पुरख प्रधान,
1: जिस मन बसै सोहत निहाल,
0: ताके निकट न आवत काल।

हर शहर विच राजनैतिक हुंदे ने, व्यापारी हुंदे ने, चोटी दे धनवान हुंदे ने। हर शहर विच रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। चंदन तरन वन वन साधना पुर पुर माए, एक चोटी दा व्यापारी बनना इतना औखा नहीं जितना ब्रह्म ज्ञानी बनना औखा। एक चोटी दा इंजीनियर डॉक्टर बन जाना, साइंटिस्ट बन जाना इतनी वड्डी गल नहीं, इतनी अकल दी गल भी नहीं जितनी अकल दी गल चाहिए धर्म नूं समझण वास्ते। बड़ी मुशक्कत है मानसिक, बड़ी मेहनत है मानसिक। जिन्ने नाम दे आया गए मशक्कत गाल, बड़ी घालना है, बड़ी मेहनत है। तो खैर धार्मिक इकट्ठ हो गए, कोई धर्म दी समझ रखदा होवे, ऐसा सिलसिला बहुत घट आउंदा, बहुत घट आउंदा। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, धार्मिक जगत विच बस दो दी समझ चाहीदी है, प्रभु दी ते गुरु दी। ते जे प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ भी नहीं, ते इकट्ठ होवे एक लख बंदियां दा, किस तरह आखोगे धार्मिक इकट्ठ है। हुण मैनूं तुहाडे बर्दाश्त दे मादे दा ते पता नहीं, पर कंठ तक गल आ गई है, मैं कहण लगा बहुत सारी मस्जिदां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा, बहुत सारे मंदरां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा, बहुत सारे गुरुद्वारियां दा इकट्ठ धार्मिक नहीं होंदा। हुण होर भी मैनूं कहण देणा, बहुत सारे धार्मिक कर्म नहीं होंदे, नहीं होंदे। बहुत सारियां धार्मिक क्रियावां दिखाई दे रही ने, धार्मिक क्रिया है धार्मिक नहीं है। कारण जद प्रभु दी समझ नहीं ते गुरु दी समझ नहीं तो फिर किस तरह धार्मिक कर्म होगा। प्रभु नू कहंदे ने ओ घर है, घर है। गुरु नू कहंदे ने ओ दर है, ते गुरबाणी कहंदी है दर घर की सो जी ना। बड़ी कीमती पंक्ति है, ना दर दा पता ना घर दा पता। सतगुर ए सवालिया फिकरा भी उच्चारण करदे ने, सो दर कहा सो घर कहा, जित बै सर्व संभाले। जिंदगी एवें कर्म कांड दे चना लंघ जाए, कुछ उद्यम करो, उपराले करो। असी अरदास दे चे शब्द जोड़े हुए ने, सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आ। तेरे जिन्हां मिलिया तेरी याद चल पाए, जिन्हां दे संदणिया मेरी दुरमत वंजे, मित्र असाजड़े से। मुख्तसर में अर्ज करा, धार्मिक मंदिर बना लेना सेवा है, सेवा नाल बनते ने मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदां। दान नाल, दान सेवा है, मेहनत नाल धन कमाया, धन दान दे दिता सेवा है। दान सिमरन नहीं है, और दान नाल कोई मन निर्मल नहीं होंदा। अगर सिमरन ना होवे तो दानी महाहंकारी होंदा, दानी महा बेईमान होंदा, गुस्ताखी माफ है। बहुत वड्डा दानी पर बहुत वड्डा बेईमान है, बेईमानी करके धन कमाया, दानी बने होया। सती पाप कर सत कमाए, बड़ी कीमती पंक्ति है। सती पता है किसे नूं कहिंदे ने? दानी नूं। सत कमाए, सती पाप कर सत कमाए, दानी पाप करके धन इकट्ठा करदा है, फिर दान देंदा है, कहिंदा मैं धार्मिक कर्म कीता, हद हो गई। जिहड़ा तू कमाया ही पाप नाल, ओह दित्ता होया पुन किस तरह हो गया, किवें हो गया? गुरबाणी बहुत गहराई जांदी, इतना ना समझ लेना। मैनूं कई मिल पैंदे ने, ज्ञानी जी अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने, मैं कह तेरे चेहरे दे उत्ते एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलदी, एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलती। तेरे व्यवहार दे उत्ते एक पंक्ति दी झलक भी नहीं मिलती। की होया तू चार सुखमनी साहब दे पाठ कर लै? दान सेवा है,

0: गली ढूंढी है कथना करड़ा सार, कर्म मिले ता पाई है और हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी।
1: नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया, एहो जीव पोते जन्म भ्रमिया ता सतगुर शब्द सुनाया, सतगुर जे वरदाता कोणी सब

दीपालोआ मंडला खंडा वर पंडा अंड जेर जी उत बजा खाणी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए संभाले सबना जिन करता है करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग जज्वारी स्वास्थ्य।

पहला पड़ पड़ गड्डी लगी है पड़ पड़ भरिए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड्डिए खात पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेती आरजा पड़िए।

जेकर सूतक मनिए सत्य सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज न कोए पहला पानी जीव है।

0: bit of chaos.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI रेडियो ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

सुख दाता पै भंजनो तिस आगे कर अरदास, मेहर करे जिस मेहरबान तां कार दावे रास। बोलो जी वाहिगुरु, एको अंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo
2: 6049 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
3: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
6: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties,

0: हट ते कायम है।
1: उस समय भरमण देच नामदेव जी दी माता भी नामदेव जी दे नाल सन, ते मां ने कह दिता छोड़ राम की ना भजे खुदा है, छड़ जान बचदी है, खुदा खुदा कहना आरंभ कर। नामदेव कहने नहीं, मैं ऐसा नहीं करना, कतई नहीं करना। ते मां कहन लगी मैं ते कई दफा तेरी जबान तो अल्लाह दी धुनी सुनी है, खुदा दे गीत सुने ने, ते तुम आप ही ते कहिंदा रहे हैं राम ते खुदा दे च कोई भेद नहीं है, और तू ऐसे गीत गांदा रहे। नामदेव जी महाराज दा ऐसा एक पावन पवित्र वाक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च मौजूद है, मैं अंध ले की टेक तेरा नाम खुंद कारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है अधारा, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी। ये शब्द नामदेव जी महाराज दा, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दरपेश तो मनी, दरियाओ तू दहिंद तू बिस्यार तू धनी, देह लेह एक तू दिगर को नहीं, तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी, नामे चे स्वामी बख्शिंद तो हरी। एदे च जितने भी नाम नामदेव जी महाराज ने उच्चारण कीते ने करीबन करीबन इस्लामी ने, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दरपेश तो मनी। तो ये सारे नाम इस्लामी ने, मां ने कहा तू ते कई दफा अल्लाह अल्लाह दी धुन रटदा है, कई दफा करीम करीम रहीम रहीम करके उच्चारण करदा है, आज की है आज कह दे जान बख्शी हो जाएगी। तो श्री नामदेव जी महाराज अपनी माता नु कहंदे ने उदो जद मैं अल्लाह दा नाम उच्चारण करदा अपनी मौज देच अपनी मस्ती देच, लेकिन अज आखांगा ते मजबूरी देच, जे अद आखांगा ता जबर हेठ, अज आखांगा ता दबाव हेठ, तो दबाव हेठ कहन वास्ते मैं तैयार नहीं, दबाव दे विच आके ते मैं राम कहन नु भी तैयार नहीं, मैं खुदा किस तरह आखांगा, मौज नाल कहना मस्ती नाल कहना, लिहाजा मैं ऐसा नहीं करांगा। कहंदे ने कि सात घड़ी जब बीती सुनी अजू ना आए त्रिभुवन धनी। नामदेव जी महाराज ने प्रार्थना कीती, हे प्रभु मैं अपना फैसला तेरे हथ छोड़दा, जो तेरी मर्जी। प्रभु अपनी वड़याई चाहंदा जनका जयकार कराई, ऐसा हो जांदा है। कई दफा प्रभु दी वड़याई भगतां दे जय जयकार तो प्रगट होंदी है, संतां दे जय जयकार तो प्रगट होंदी है। कहिंदे ने मोई होई गऊ उठ खड़ोई, और बादशाह दे पेट दे सूल पै गए, दर्द होना शुरू होया। इधर मोई होई गऊ जद जिंदा हुई इस करामात नु वेख्या, दूसरे पासे शरीर दे अथा पीड़ा नु वेख्या, तो अपनी करनी ते शर्मसार होया, पछतावा पैदा होया, आके नामदेव दी कदम बोसी कीती, नामदेव दे कदमां ते आके मत्था टेकिया। तदई ते गुरु नानक देव जी महाराज कहंदन हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजा। हर युग देच हर समय चंगे चंगे भगत होए ने, और उन्हां दी लज्जा प्रभु आप रखदा रहे, उन्हां दी लज्जा ईश्वर आप रखदा रहे। श्री नामदेव जी महाराज भ्रमण करदे होए थां पर थां उपदेश संदेश देंदे होए आखिर वापस पंडरपुर आए। पंडरपुर दे विच वी आप नाल ओही व्यवहार होया जो औंडे दे विच होया, क्यों कि पंडरपुर दे वसनीकां नूं भी पता सी कि आप जात दे छींबा ने, और नवे कपड़िया नूं खुंभ ते चाड़ के धो के ते फिर उन्हां नूं रंगणा, ए नामदेव दी किरत सी, नामदेव दा धंधा सी। लेकिन भगती भाव दे गीत इस ढंग नाल चारों पासे खिलेरे कि पंडरपुर दे वसनीक आप दी परिक्रमा करन लगे, भुल गए कि ए शूद्र है। आखिर तार्किक पुरोहित लोगां ने विद्वानां ने आप तो पुछया

कि तुसी अपना हिरदा प्रभु नाल किवें जोड़े की युक्ति है की युक्ति है आखिर ढंग की वरते है तौर तरीका की वरते है। तौर तरीका कबीर तो भी किसी वक्त पूछा गया से ता आपने साफ कह दिता सी तज भरम करम बिद निखेद राम नाम ले ही गुरु प्रसाद जन कबीर राम कर सने बिद निखेद बिदि निषेद कोई विधि नहीं है कोई ढंग नहीं है। कबीर कहते ने कोई ढंग नहीं है। भरे आया ठंडा पानी दा गिलास मनुख दे अगों रख दे है ते ओ पीण दा ढंग पुछे विधि विधान पुछे के पीण दा ढंग की है विधि की है तो गल स्पष्ट हो गई कि इस बंदे नूं प्यास नहीं लगी। 36 प्रकार दा भोजन परोस के किसे मनुख दे अगों रख देईए ते ओ ए आखे कि छकण दा ढंग की है भोजन करन दा ढंग की है ते गल स्पष्ट हो गई इस नूं भुख नहीं लगी। भूखे खावत लाज ना आवे भुखा मनुख ढंग नहीं पुछदा हुंदा तौर तरीका नहीं पुछदा हुंदा ओ छकण लग पैंदा खाण लग पैंदा है। ढंग तौर तरीके दा पुछना ही इस गल दा सबूत है कि इस नूं भुख नहीं लगी। श्री नामदेव जी महाराज तो यह पुछ कीती गई ढंग की है तौर तरीका की है। कबीर कहिंदे जद मनुख दे अंदर सत्संग करदे आ प्यास पैदा होंदी है भुख पैदा होंदी है ते भुख पैदा होंदे ही ओ ईश्वर दे गीत अलापन लग पैंदा है ओ ईश्वर दा नाम उचारण करन लग पैंदा है। जैसे भुख लगे ते बच्चा रोण लग पैंदा है सत्संग विच बैठदियां बैठदियां जद सत दी भुख पैदा होंदी है ते रसना अपने आप ही सतनाम उचारण करन लग पैंदी है। तरीका आपदे कोल पुछया गया दसो नाम देओ तुसी अपना हिरदा परमात्मा नाल किवें जोड़े है। आखिर एक नियम है कि दोहां नूं जोड़न लई तीसरे दी लोड़ पैंदी है। दो इट्टां नूं जोड़ना है गारा चाहिदा है दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिदी है दो कपड़ियां नूं जोड़ना है सुई धागा चाहिदा है दो लकड़ां नूं जोड़ना है सरेस चाहिदी है। तुसी अपना हिरदा प्रभु नाल जोड़े है किवें जोड़े है तो आपदा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च बड़ा कीमती वाक है कि सोए ने की सोई रुपे का धागा नामे का चित हरसों लागा। नामदेव ने अपना चित हरी नाल जोड़ लिया किवें जोड़े है किस तरह जोड़े है सुई धागे नाल सी लिया है। सुई केड़ी सोने दी धागा केड़ा चांदी दा सोयने की सुई रुपे का धागा नामे का चित हरसों लागा। सोने दी सुई की है गुरु दा शब्द गुरु दा मन मंत्र गुरमन मंत्र ए सोने दी सुई है। धागा की है उहदे च ध्यान जोड़ना उहदे च सुरत जोड़नी ए धागा है। जैसे वाहेगुरु वाहेगुरु दा उचारण करिए इते सोने दी सुई है पर इहदे च ध्यान जोड़िए ए धागा है ते ध्यान दे नाल ही मनुख सुन सकेगा उंज सुन भी नहीं सकेगा। जैसे कि एक उच्ची उच्ची बोल रहा हुंदा है दूसरा सुन रहा हुंदा है ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा मित्रा ए गल फिर आखो नहीं सुनी क्यों नहीं सुनी कहिंदा मेरा ध्यान किसे होर पासे चला गया। तो ध्यान धागा है इसनु गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहिंदे ने धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। तो गुरु दा जो मंत्र है इस सोयने दी सोई है और इस दे विच जो मैं अपनी सुरत जोड़ी है ध्यान जोड़िया है ए धागा है सुई चलदी रही धागा नाल चलदा रहा मेरा हिरदा प्रभु दे नाल सिलदा गया जुड़दा गया। आम जगत विच देखण विच आया कि मनुखां कोल सुई ते है धागा नहीं राम राम रटन कर रहे ने ध्यान नहीं है वाहेगुरु वाहेगुरु दा उच्चारण कर रहे ने ध्यान नहीं है। तो सोने दी सुई ते चल रही है धागा नहीं है बिन धागे बिन सुई आनी धागे तो बिना सुई की करे किस तरह सीवेगी किस तरह जोड़ेगी। तो धुन देच ध्यान दा जोड़ना शब्द देच सुरत दा जोड़ना मंत्र देच ध्यान दा जोड़ना इंज है
जैसे सुई देच तागा जो है परोरना ते इस ढंग नाल जद सुई चलदी है ते नाल तागा चलदा है मनुख दा हिरदा प्रभु नाल जुड़ जांदा है। यही आप कह रहे ने सोईने की सुई रुपे का धागा नामे का चित हर सौ लागा। हरि नाल चित जुड़ गया ते हरि ते आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप नाल जुड़दिया ही आनंदमयी अवस्था मनुख दी बन जांदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा भी फरमान है चित्ते चित मिलाए ता होवे रंग घना। परमात्मा दे चित नाल तू अपना चित जोड़ अथा रंग बनेगा अथा सुख बनेगा। क्यों के मित का चित अनूप सो मरम न जाने। परमात्मा दा चित अति सुंदर है आनंदमयी है रहस्यमयी है गुण निधान है। प्रभु दा ऐसा चित जेदे सारे गुण ने सारा आनंद है सारिया सुगंधियां ने सारा खेड़ा है सारा स्वप्पन है। जैसे कोई प्रभु दे चित नाल अपना चित जोड़दा है जगत दी सारी स्वप्पन नाल उसने अपना चित जोड़िया जगत दे सारे संगीत नाल उसने अपना चित जोड़िया। जैसे उस परम संगीत दे नाल ते परम स्वप्पन दे नाल चित जुड़दा है मनुख दे अंदर भी परम स्वप्पन ते संगीत दा जन्म होंदा है। मित का चित अनूप सो मरम न जानई गाहक गुनी अपार सो तत्व पछानई चित्ते चित मिलाए ता होवे रंग घना हरहा चंचल चोरे मार ता पावे सुख घना। चूंकि परमात्मा दे चित देच परम नाद है परम संगीत है उस नाल जुड़दे हां परम संगीत दियां धुनियां मनुख दे अंदर वजनियां शुरू हो जांदियां ने। उसदा जिक्र श्री नाम देव जी महाराज अपनी बाणी च इंज करदे ने अणमणिया मंदल बाजे बिन सावन घनहर गाजे बादल बिन बरखा होई जो तत बिचारे कोई। मेरे अंदर एक ढोल वज रहा है नामदेव कहंदे ने लेकिन वह चमड़े का मड़िया होया नहीं है पर वज रहा है अठे पैर वज रहा है बड़े सुर दे च वज रहा है बड़े ताल दे च वज रहा है अणमड़िया मंदल बाजे। अज तक दे तमाम सिरमोर भगतां ने ऐसा आख्या है कि साडे अंदर संगीत दी धुन चल रही है राग दी धुन चल रही है ते राग दे जन्मदाते भी संत लोग ने भगत लोग ने। दरअसल परमात्मा की है परम सुंदरता और परम संगीत परम रस परम आनंद। परमात्मा नाल जुड़ना परम आनंद नाल जुड़ना है परम संगीत नाल जुड़ना है महान स्वप्न नाल जुड़ना है। ये ठीक है कि पुराने समय दे वैदिक ऋषियां ने भी जो ईश्वर दे गुण मने ने इस ढंग नाल मने ने सत्यम शिवम सुंदरम वो सत है शिवम वो प्रकाशमान है सुंदरम वो अति सुंदर है। सत चित आनंद वो सत स्वरूप है आनंद स्वरूप है सत सुहान सदा मन चाओ। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने वो सत है सुहान वो अति सुंदर है सदा मन चाओ वो सदीवी खिड़िया है उसदे चित दे सुंदरता है दैवी गुणा दी स्वप्न है परम संगीत है। तो परमात्मा नाल जैसे कोई जुड़दा है परम संगीत नाल जुड़दा है परम स्वप्न नाल जुड़दा है परम आनंद नाल जुड़दा है। इस वास्ते नामदेव जी महाराज कहंदे ने कि मेरे अंदर परम आनंद दी छाप लगी है और मेरे अंदर दैवी गुणा दी परम सुंदरता प्रगट हुई है। आप ते साफ कहंदे ने प्रण में नामदेव ना के बिना ना सोहे बत्ती लखणा। शरीरक तल ते अगर सुंदरता दे बत्ती लखण भी मनुख दे कोल होवन पर दैवी सुंदरता दैवी गुणा दा जो स्वप्न है ए बंदे कुल ना होवे तो 32 लक्षण भी किसे काम दे रहे। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप नाम बिना सब कुबज करूप। भावे कितना ही सुंदर होवे अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। तो नामदेव जी महाराज कहंदे ने मेरे अंदर परम स्वप्न पैदा होया है और परम आनंद पैदा होया ते परम संगीत दियां धुनियां मेरे अंदर पैदा हो गई ने नाद वज रहा है। अणमणिया मंदल बाजे बिन सावन घन हर गाजे बिना सावन तो मेरे अंदर बदल गरजदे पैने
कबीर अंबर घन हर छाया बरख बरे सरताल चात्रिक ज्यों तरसत रहे तिनको कौन हवाल गुरु रूपी बदल मेरे अंदर गर्ज रहे परमात्मा दा गर्जन शुरू है और अमृत नाम दी बरखा मेरे हृदय ते हो रही है परम संगीत परम नाद मेरे अंदर छिड़े होया है और इथों गल स्पष्ट हो गई प्रभु नाल जुड़ना परम संगीत नाल जुड़ना है परम हरियावल नाल जुड़ना है परम आनंद नाल जुड़ना है परम स्वपन नाल जुड़ना है। श्री नामदेव जी महाराज दे अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने ते जिथे भावना प्रधान है जज्बे प्रधान ने बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने कोई अकल दे तल ते जीवंदा है कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी जो हिरदे दे तल दे ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है वह मनुष्य ही नहीं है वह पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है। दरअसल विचार नाल वस्तु नूं समझना है हस्ती नूं समझना है और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तां जुड़ नहीं सकांगे विचार ना होए तां समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव दी आवश्यकता ज्यादा है अधिक है। भाव प्रथम है विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है पिता नाल संबंध जोड़दा है भैणा नाल संबंध जोड़दा है भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार दी दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई अजे ते भाव दी दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समां लंघ जांदा है और फिर भी पूरा समझना उस नूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे उहनूं हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे विच लिया तो हुण जज्बा पैदा कर भाव पैदा कर श्रद्धा पैदा कर ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनू झलक मिली है तो हुण जुड़न दी कोशिश कर पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए महान दार्शनिक हो जाए महान फिलोसफर हो जाए तो फिर उस लई जज्बियां नूं पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है तेरे सीने में दम है दिल नहीं है तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा जज्बियां दी दुनिया च पहुंच वलवलियां दी दुनिया च पहुंच भावना दी दुनिया च पहुंच जे तू कोई रस लेना है स्वाद लेना है आनंद लेना है। हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीव है अकल ते रस्ते दा चानना है ते हुन दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे च ही फसा रह जांदा है और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जांदा है। विचारक अपने विचारां दे च ही कई दफा उलझ के जो है रह जांदा है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिरे कितना भी खपिए कितना भी विचारिए ता भी विचारदियां विचारदियां पता चलदा है कि जिथों असी शुरू होई सी उत्थे ही खड़े हैं एक कदम भी अग्गे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा ओ साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा ओ साडी बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा बस उसे क्षण चाहिदा है
ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ, ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੇ, ਤਿਉਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ ਇੰਜ, ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਛਲੀ ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਊ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸਦਾ ਬਛੜਾ ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਵੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਛੀਣ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਝਣਾ, ਬਸ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਘਟੀ, ਭਾਵਨਾ ਘਟੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਿਆ, ਰਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਜੋੜੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਾਰੀ, ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਤੜਪਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ, ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ਰਧਾ ਛੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਸ ਆਨੰਦ ਔਰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਤੜਪਣਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਪੂਰਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਵਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਝ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭਗਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤੇ ਜੁੜਿਆ, ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ
श्री रविदास जी महाराज कहिंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न तरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है, हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रही। ए भगत विचारा का सिर्फ प्रयोग करते ने, जीव लेने हिरदे दे तलते, भावना दे तलते, और जब भावना करके प्रभु नाल जुड़दे ने, तो इना दे अंदरों जो गीत फुटदे ने, जो ज्ञान फुटदा है, वो इस तरह है जैसे कि पहाड़ा दे चों कोई झरना वग तुरिया है। श्री नामदेव जी महाराज दे विचार कितने बुलंद ने, ज्ञान कितना महान है, उना दे एक पावन पवित्र शब्द तो पता चलता है, आम गाथा है, और वो भाई साहब भाई गुरुदास जी ने भी लिखी है कि कम किते प्यो चलिया, नामदेव नू आख सुनाया। नामदेव नू सारी गल सुना दिती, ठाकुर दी सेवा करी, घर विच मूर्तियां रखिया सन, ते नामदेव नू कहिंदे ने तू अमृत वेले उठना है, तू ठाकरा नू इशनान कराण लई नदी तो मांझी हुई गागर विच जल भर के लियाउणा है, पवित्र गागर विच जल भर के लियाउणा है, ते ठाकरा नू इशनान कराणा है, बगीचे विच जाके फुल तोड़ने ने, बगिया विच जाके ते तोड़े हुए फुलां दी माला बना के ठाकर दे गल विच पानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, घर विच जिहड़ी कपिला गऊ है उसका दुध चोके तू ठाकरा नू पिलाना है। यह सारा कर्म जो उन्हां दा पिता नित करदा सी, चूंकि अज किधरे बाहर कम कार लई जा रहे है, तो नामदेव नू कह दिता है जितने चिर तक मैं नाम आ ए सारा पूजा ए सारा अर्चा बंधन तू करना है। अमृत वेले बने हुए रोजाना दे स्वभाव मुताबक आप उठे ने ब्रह्म मुहूर्त विच, गागर पित्तल दी सिर ते रखी है, नदी दे तट ते गए ने, गागर खूब मांजी है, इशनान कीता है, गागर नू भरे है, ता आप दी दृष्टि जल जंतुआं ते पै गई, मछलियां ते पै गई, कुछ मेंढक सन उना ते पै गई, कुछ कछुए सन उना ते पै गए, आप दे अंदरों अमर गीत दा झरना इंज फुटिया, आनी ले कुंभ भराई ले उद्दक, ठाकर कोई स्नान करो, पर 42 लख जीव जल में होते, बीठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र देश प्रभु दा एक नाम बीठल भी है, उसे दाई आप प्रयोग कर देने, बीठल नाम दा एक मंदिर भी है, बीठल मंदिर पंडरपुर देश, और वो तीर्थ है, और बहुत वड्डी पूर्णमाशी वाले दिन भीड़ रहती है। श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं, ए बीठल दस मैं की करा, मैं पानी भरे है, गागर मांझी है, तेनू इशनान कराना है, पर करा की पानी पवित्र नहीं है, क्यों के 42 लख जूनिया ते आखर पानी दे चिने, ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही कर दिया ने, जन्म उना दा पानी दे च, जीवन उना दा पानी दे च, मरण उना दा पानी दे च, सारी क्रिया पानी दे च, और ए कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी दे च। पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबक 84 लख जोनिया ने, जेदे चो 42 लख जल दे च ने, 21 लख थल जंतु ने, और 21 लख नभ जंतु ने, आकाश दे च उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख दी गिनती कीती गई है, पर ए अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी दे च है। तो नामदेव कहिंदे ने, जद जीवन पानी दे च है, जन्म पानी दे च है, मरण पानी दे च है, ए पानी पवित्र नहीं हो सकदा, ये ते अपवित्र है। हे प्रभु, मैं इस जल दा तेनू इशनान नहीं कराना, खाली गागर लेके आ गए, और सोच रहे मैं अज ठाकरा नू इशनान नहीं कराना, पानी ते अपवित्र है, ते ए ते ठाकरा नू अपवित्र करना होवेगा, पर ए सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है
ਗਾਲਬਨ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਇਤਨੀ ਉਜਵਲ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਲ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਬਗੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੌਂਰੇ ਤਿਤਲੀਆਂ। ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਭੌਂਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ ਹੇ ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੌਂਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨੀਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋ ਪੂਜ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭੌਂਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੂ ਬਹੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਓ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਓ, ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋ ਬਿਡਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਨ ਨੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭੌਰਿਆਂ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਊ ਚੋ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗਊ ਦਾ ਬਛੜਾ ਖੋਲਿਆ, ਬਛੜਾ ਥਣ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਮੈਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਆ ਨੀ ਲੈ ਦੁੱਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਬਿਤਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬੀਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਹੇ ਬੀਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੰਘ ਗਿਆ ਬਛੜਾ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋ ਬਿਟਾਰਿਓ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਨੀ ਲੈ ਦੁੱਧ ਰਿਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਬਿਟਾਰਿਓ ਬਛਰੇ ਬਿਠਲ ਭੇਲਾ ਕਾਹੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਠਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਛੜੇ ਨੇ ਪੀ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਵਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਛੜਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਥਣਾਂ ਦੇ ਚ ਹੀ ਝੂਠਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਚ ਦੇ ਚ, ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਚ ਆਪ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰ ਧੁਨੀ ਇੰਜ ਉੱਠੀ, ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਊਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਜਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਮੈਲਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹੈ,
तू ते पावन है, तू ते अति पवित्र है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने इशनान ते मैं तेनू तां करावां कि तू मैला होवे, पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं। और तेनू की इशनान करावां, तू जल जंतु होके अठे पैर जल विच रह रहे हैं, सागरां विच रह रहे हैं, दरियावां विच रह रहे हैं, झीलां विच रह रहे हैं, तेनू की इशनान करावां। इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया, हे प्रभु जल विच तू, मच्छी विच तू, तू ते व्यापक है। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्लां बारे ऐसा कहंदे ने, हे प्रभु जद मैं सोचिया कि तेनू फुल्लां दी माला बना के पहनावा, ते तू तितली होके, शहद दी मक्खी होके, भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना, तेनू की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनू दुध पिलावा, पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दुध पी लेना, आप ही भोग ला लेना, गऊ तू, बछड़ा तू, दुध तू, तू ही तू है। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया, ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे प्रभु नू, मुसलमान लभदा है खानकाह दे चों, पर नामदेव जी महाराज कहंदे ने मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इसनो श्री नंद लाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक बुत जाहिद फिदाए खानकाह, हर को जा जामे मुहब्बत दीदायम सरशार अस्त। ब्राह्मण लभदा है तेनू बुतां दे चों, और मुस्लिम लभदा है तेनू खानकाह दे चों, पर हर को जा जामे मुहब्बत, मैनू ते हर थां ते तेरी मुहब्बत, तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है, चाहे वह मंदिर है, चाहे वह मस्जिद है, हर पासे तू ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने, हिंदू पूजे देहोरा, मुसलमान मसीद, नामे सोई सेविया, ना देहोरा ना मसीद, तो फिर किथे है? जे मंदिर ते मस्जिद च नहीं तो फिर किथे है? तो नामदेव कहंदे ने, सबे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, मेरा राम घट घट विच बोल रहा है। और राम तो बिना कौन बोल सकता है? राम ही बोल रहा है पशुआं विच, राम ही बोल रहा है पक्षियां विच, राम ही बोल रहा है मनुखां विच, राम ही बोल रहा है पवन दी शांशां विच, राम ही बोल रहा है सागर दे गर्जन विच, बदलां दे गर्जन विच। और सागर दी गर्जन दे विच ही नहीं, प्रभु बोल रहा है कोयल दी कू विच, बुलबुलां दे चहचहाण विच, हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं। सबे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं, सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह दा जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज उस दे पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि विच प्रभु एक व्यापक सत्ता है। वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़िया टुकड़िया विच नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है। पर उस तक किवें पहुंची है ते उसनू किवें प्राप्त करिए, नामदेव दे ये आखरी बोल आप जी दे समक्ष भेट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, ज्यों जल मांझे माछलो, मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो, खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नू किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है, किवें पहुंचिए, मार्ग की है आखिर, रस्ता की है। तो नामदेव कहंदे ने, जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है, उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदियां ही मार्ग बनदा है,
आसमान दे बने बड़ाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं, उंज कोई रस्ता नहीं, बस उड़दिया ही रस्ता बनता है, ते मच्छी दे चलदिया ही सागर दे मार्ग बनता है, उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है, राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है, गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर देंदा है, तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है, इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी। पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जब चलांगे तो चलदिया ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखदे हां कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जांदी, एक रेखा बन जांदी है, एक मार्ग बन जांदा है। अध्यात्मक मंडल दे च ऐसा है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना आरंभ कर देईए, बस आरंभ करदिया ही मार्ग बनता है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं, इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक। जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचता है। इस नूं खोलिया है परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास। गुरुमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरुमुख खोज अलख है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरुमुख जिहड़ा है वह परमात्मा की खोज इस तरह कर लैंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है। बिना मार्ग ते उड़दिया ही मार्ग बनता है, चलदिया ही मार्ग बनता है। इस तरह गुरु का सिख जब जपदा है तो जपदिया ही जपदिया परमात्मा तक पहुंच जांदा है, ईश्वर तक पहुंच जांदा है, अकाल पुरख तक पहुंच जांदा है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है, राम राम जपदिया ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होवेगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल विच लीन, श्री नामदेव जी महाराज अपने गीतां दे राही जगत नूं बिठल विच लीन करदे रहे, राम विच लीन करदे रहे और भ्रमण करदियां करदियां अनेकां नूं आपने राम विच लीन कीता, बिठल विच लीन कीता और लीन करदियां करदियां एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल विच लीन हो गए, उस प्रभु विच लीन हो गए। और लीनता ऐसी होई सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।

हे प्रभु, किधरे तू महाकवि है, किधरे तू महासंगीतकार, बहुत बड़ा संगीतकार। वही गल जो गुरु नानक कहते हैं गुरु गोविंद सिंह, पर हे प्रभु किधरे तू भूत प्रेत है, पिशाच है, शरीर ही तेरे कोल नहीं, रूह भटक दी पई। कहूं जच गंधर्व उरग कहूं बेदे आदर, कहूं भय किनर पिशाच कहूं प्रेत हो, कहूं होए के हिंदू आ गायत्री को गुप्त जप्यो, कहूं होए के तुरका पुकारे बांग देत हो। हे प्रभु किधरे तू हिंदू है, तू ही है और कोई नहीं है, तू ही है। गुफा दे बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जप्या करदा है, पर हे प्रभु किधरे तू मुल्ला है, तुरक है, मुरारे ती चढ़ के बांग पिया देना। गुफा दे च बैठ के मंत्रां दा जप करन वाले हे प्रभु तू ही है, मुनारे ते चढ़ के बांग देन वाले हे प्रभु तू ही है। कहूं कोब काब होए पुराण को, पढ़त मत कत हूं कुरान को, निदान जान लेत हो, कहूं बेदरीत कहूं तांसं विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो। हे प्रभु मैं देखदा किधरे तू पुराणा दा पंडित है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञाता है, पर किधरे तू कुरान दा हाफिज है, तू ही है और कुछ नहीं, तू ही है। इना सवैया दी लड़ीवार जे मैं व्याख्या की थी, समा अपने ढंग नाल चला जांदा है। एक सवैया होर रखदे आ थोड़े सामने कवित। कहूं गीत के गवैया, द्वापुर दे चली गई बिरती धन गुरु गोविंद सिंह जी। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, हे प्रभु किधरे तू मधुर गीत गाना है, ते मुरली बजाना, बांसुरी बजाना, धन गुरु गोविंद सिंह। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत्य के नचैया, कहूं नर को आकार। किधरे आकार तेरा पुरुष दा है, बड़ा सोना नृत्यकार है, बांसुरी बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कहूं वेद बानी, कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा कहूं रानी, कहूं नार के प्रकार। पर हे प्रभु किधरे तू नारी दी तरह, नर दी तरह नहीं है, स्त्री दी तरह है, पुरुष दी तरह नहीं है। किधरे वेद बानी विद्या नाल भरी हुई, ज्ञान नाल भरे हुए ग्रंथां दियां कहानियां तू कर रहे हैं, पर किधरे कोक की कहानी। आपदी ज्ञातली अर्ज करा, कोका पंडित ने काम सूत्र एक ग्रंथ लिखे, उस वक्त दे कुछ नैतिक पुरुषा ने, सियाने पुरुषा ने कहा सी तू की लिख रहे हैं, तू ऋषि है, तू संत है, काम ते लिख रहे हैं। उन्हें आख्या जे क्रोध ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, हंकार ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, लोभ ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, मोह ते लिखिया भी जा सकता है ते बोलिया जा सकता है, काम ते क्यों नहीं लिखिया जा सकता ते क्यों नहीं बोलिया जा सकता। उदी दलील से आखिर जद भी किधरे मनुख गिरदा है तो ना पंजा करके ही गिरदा है, और जिस करके ज्यादा गिरदा है, अधिक गिरदा है, उदी जानकारी मनुख नु होनी चाहिए, होनी चाहिए। उन्हें इतना वड्डा ग्रंथ लिखिया काम सूत्र, और आप सुन के हैरान हो गए, उस दे जेड़े कुछ पहलू दसम ग्रंथ दे च मिलते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहिंदे 24 अवतारां दी जो मैं कथा लिखी है, मैं अनुवाद कीता है, टीका कीता है, ये मेरे अपने ख्याल नहीं। दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। मेरी कोई वासना नहीं, बस मैं ते धर्म दा युद्ध करन वाला, प्रभु नाल जुड़न ते जोड़न वाला, पर मैं प्राचीन धर्म ग्रंथां दा ये टीका कीता है, अनुवाद कीता है, ताकि मेरे खालसे नूं जगत नूं पुराने धर्म दा, पुराने समाज दा, पुराने लोकाचार दा पता होवे, ज्ञान सहन सरदान दे इंद्र रोवाया, परस राम रोवे घर आया। एक शब्द है गुरु नानक देव जी मां कि परस राम कौन सी, इंद्र कौन सी, ये जनमेजा कौन सी, अजे सरोवे बिखिया खाए, ऐसी दरगे मिले सजाए, ये सारे कौन सन, इति पुराण पढ़ने पैणगे।

0: पुराणक प्रसंग पढ़ने पैणगे, जानना पैगा। बहुत कच्चे दिल दिमाग दे बंदे सिख जगत दे अपने आप नू रैबर मनन लग पे ने, ओदे नाल सिख धर्म संकीर्ण होके रह गया, जदकि इस तो वड्डा होर कोई विशाल धर्म नहीं सी। एदा सबूत धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सारे भगत ते बैठे ने, बांग देण वाला भी बैठा है ते मुरली दी तान छेड़न वाला भी बैठा है, सब कुछ मौजूद है। खैर मैं लमकावा ना, सतगुरु कहिंदे ने मेरे ख्याल नहीं ने, मैं टीका कीता है, अनुवाद कीता। क्यों? ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नु पढ़ांदा सी, शूदर नु नहीं। ते ब्राह्मण जिहड़ी विद्या पढ़ांदा सी संस्कृत सी बड़ी बेखम, ओ हुण लोक भाषा नहीं रह गई सी, किसे वक्त सी, किसे वक्त सारी संस्कृत बोलदे सन। समां दे नाल भाषावां बदलदियां, अज पंजाबी दा रूप भी नहीं रह गया, पंजाबी दे च बहुत सारे अल्फाज होर दे होर आ गए, ये भी मैं अर्ज कर दें। लहिंदी पंजाबी, चढ़दी पंजाबी अलग अलग है। पाकिस्तान दे विच पंजाबी बोलदे ने, साडी पंजाबी नालों भिन्न हो गई, बिल्कुल भिन्न हो गई। मैनूं चंगी तरह याद है, श्रोमणी कमेटी ने एक दफा दास की सेवा लाई ननकाणा साहब गुरु नानक देव जी महाराज के गुरपुरब से, वे उत्थों की मंग आई है टीवी से प्रोग्राम जाना है पर उर्दू दे कथा करनी है, लैक्चर देने भी तुसी तिने दिन गुरुद्वारे च उर्दू च बोलना, ठीक। और उस सेवा मैं खुशी नाल कबूल की, मैं कहा बड़े दिन बाद सतगुरु के उस पावन स्थान के दर्शन नसीब हो गए। बड़ा भारी इकट्ठ, राय बुलार दी जिहड़ी संतान भट्टी खानदान वह भी सारे बैठे सन। रात नूं भी दास हाजरी भरदा हुंदा सी, वह जिहड़ी भट्टी खानदान है राय बुलार दी होर सारे, वह कहण लगे रात नूं तुसीं पंजाबी च ही बोले, एक चंगा। रात नूं मैं पंजाबी च बोलिया, मेरे कमरे चो मुसलमान वीर आ गया, भई असी ते थानू हाथ जोड़ के आख्या सी, अरजोई कीती सी पंजाबी च बोलो, तुसी पंजाबी च नहीं बोले। मैं कहता भई पंजाबी च बोले हां, कहिंदे इह कीड़ी पंजाबी है, बोलेंदी पंजाबी बोल, इह कीड़ी पंजाबी, कहिंदे साडे पल्ले ते नहीं कुछ पिया। मैं कहा ठीक है, फिर मैं उर्दू च ही बोलांगा, उर्दू ते तुसी समझ लैंदे, लहिंदी पंजाबी, भावे लहिंदी पंजाबी मैं बोल सकदा, उस इलाके चो आया, पर हुण आया पंजाब 51 साल हो गए, लड़खड़ा सकदा सी मैं, इस करके नहीं बोलिया। मैं किधर लफ्जां दा बेलवज मैं कर सकदा, अशुद्धि हो सकदी है, तो हुण जिहड़ी पंजाबी मैं इसे च बोले, बोलियां ते बदलदियां भाषावां बदलदियां ने, संस्कृत लोक भाषा नहीं रही सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लोक भाषा दे ब्रिज भाषा दे हिंदी दे अनुवाद कीता उन्हां सारिआं दा, सिख जगत दे बिखाद खड़ा हो गया, ये गुरु गोबिंद सिंह दे बोल नहीं हो सकते। हुण कौन दसे, कोका पंडित ठीक कहिंदा है, जे क्रोध दे उतार चढ़ाव नूं बयान कीता जा सकदा है, किधरे किधरे क्रोध मनुख नूं पशु बना देंदा है, पागल कर देंदा है। जे लोभ दे उत्ते व्याख्या कीती जा सकदी है, ते साहिब कहिंदे ने लोभ ते मनुख नूं कूकर जैसा बना देंदा है, कुत्ते जैसा बना देंदा है। ज्यों कूकर हरकाया तावे दे दिस जाए, लोभी जंत न जाने पाखा बख सब खाए, भयो लोभ संग होरा, लोभ मनुख नूं हलकाया कुत्ता बना देंदा है, हलका कुत्ता अपने मालक नूं भी वड्डण लग पैंदा है, पागल कुत्ता, लोभ ते पागल करके रख देंदा है। सीमा तो वधे होया लोभ मनुख किसे नूं भी धोखा दे सकदा है, सीमा तो वधे होया हंकार मनुख नूं जालम बना के रख देंदा है, और सीमा तो वधे होया काम मनुख नूं भ्रष्ट करके दुराचारी बना देंदा है। अगर पुरुष है तो व्यभिचारी हो जाएगा, अगर स्त्री है तो गनका हो जाएगी, वैश्या हो जाएगी, गुस्ताखी मत। इसका खुलासा किया, इसकी व्याख्या की। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्त दिच परवान कर देने हे प्रभु कहूं गीत के गवैया कहूं बेन के बजैया कहूं नृत के नचैया कहूं नरको आकारो कहूं वेद बानी किधरे ते तू वेदां दा पाठ पया करदा है ज्ञान दे धर्म ग्रंथ पया पढ़दा है कहूं कोक की कहानी किधरे कोक शास्त्र पया पढ़दा काम सूत्र पया पढ़दा काम सूत्र दी विचार चल रही है किधरे राम दे गीत ते किधरे काम दे गीत और तू ही है हे प्रभु तू ही कहूं वेदवानी कहूं कोक की कहानी कहूं राजा कहूं रानी कहूं नार के प्रकार हो कहूं बेन के बजैया कहूं धेन के चरैया किधरे गवा पे आचार दें श्री कृष्ण दी तरफ इशारा द्वापर दे सतगुरां दी सुरत चली गई कहूं बेन के बजैया कहूं धेन के चरैया कहूं लाखन लवैया कहूं सुंदर कुमार हो शुद्धता की शान हो के संतन के प्राण हो के दाता महादान हो निर्दोखी निरंकार हो हे प्रभु निरंकार तेरे इतने रूप इतने रूप हूँ इस सवैये मैं थानू सुना जावा तेवें सारी रात लंघ जाएगी मुख्तसर मैं अर्ज कर समाप्ति कर इस सारे रूप कलगीधर पातशाह बयान कर देना अज तक ते आख्या गया है परमात्मा प्रकाश रूप है प्रकाश रूप है पर जाप साहब विच महाराज कहिंदे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे हे प्रकाश दे रूप परमात्मा तेनू नमस्कार करदा पर अंधेरा भी तेरी शक्ति तो बिना नहीं हो सकता मैं इसनु भी मत्था टेकदा नमस्कार इतनी समदृष्टि जद भी किसे दा सुनिया होया भरोसा बनता है ते भरोसा भावना बन जाता है भक्ति बन जाता है वो समदृष्ट हो जाता है चाहे हिंदू वे चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो समदृष्ट हो जाएगा ब्रह्म ज्ञानी उदी दृष्टि समदृष्ट हो जाती है ब्रह्म ज्ञानी सदा समदृष्ट ब्रह्म ज्ञानी की अमृत दृष्ट वो वास्तविक समदृष्ट हो जाता है सारिया नु इको जिहा सम बराबर बराबर करके देखण लग पैंदा है इसे तरीके नाल एक मुस्लिम फकीर अमीर खुसरो इंज बयान कर देता है बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना ए प्रभु हुणे तू आप फैसला करो मंदिर सी के मस्जिद सी तेरे गीत हो रहे सन तेरी गल हो रही सी मेरा सिर झुक गया मैं मत्था टेक दिता मैं सजदा कर दिता बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना ये ऋषियां नालों घट गल नहीं है ब्रह्म ज्ञान दी शिखरता नु छूंदी है पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने अक्सर भरोसा डोल जाता है इस वास्ते अरदास है डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ अवल ते कोई बिरला ही सुनदा स्रोता सुनना ते सुनिया होया अगर वाकई मन ने मन लिया सुनिए मनिए नहीं ते की सुनिया मनिया नहीं ते की सुनिया मैं एक दफा फिर दोहरावा खादा होया भोजन जो शरीर दे विच रह जांदा है ओही खून बनदा है सुनिया होया गुरु दा वचन जो मन मन लैंदा है ओही मन दा हिस्सा बनदा है वरना नहीं बनदा नहीं बनदा वो भरोसा बन जांदा है विश्वास बन जांदा है पर ये मनुख खतरे च होवेगा भरोसा डोल सकदा है विश्वास डोल सकदा है सुनदा रहा मनदा रहा ते भरोसा वद्दा गया अगर ये भावना बन गया भक्ति बन गया हुण इहदे शरीर दे टुकड़े टुकड़े ते हो सकदे ने दा भरोसा नहीं डोलेगा जो कुछ सर्वन कीता है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरणां च अरदास बिने है सतगुरु थोड़ा सुनिया होया मनण तक पहुंचावे मनना दृढ़ भरोसा बन जाए विश्वास बन जाए ते विश्वास भक्ति बन जाए भावना बन जाए सुनिए मनिए मन कीता भाव अंतरगत तीरत मल्लाओ यही अंदर दा तीरथ है सारे पापा नु धोल देने माघ पुनीत भई तीरथ अंदर जाने यही अंदर दा तीरथ है सारे दुख मिट जाने सारे पाप मिट जाने साहिब इस तरह दी निर्मलता पवित्रता ते आनंद आप जी दी झोली च पावन वाहेगुरु जी का खालसा
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale Washington ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਸ ਹਨ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 19.98 ਦਾ, 4 ਕਿਲੋ ਟੈਲਫੋਲ ਮੈਂਗੋਜ 15.99 ਦਾ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਹਦਵਾਣਾ 68 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: Punjabiyan da ikko ik harman pyara grocery store Fruity Kehna, jinna de prices wholesale nalon vi ghat han. Fruity Kehna di navi location South Sari vich khul gayi hai. 2990152 Street. Is hafte de long weekend specials han 30 July to 5 August tak. Lal gande 25 pound da bag 1998 da. 4 kilo Telfol mangoes 1599 da box. Ate bina beej wala hadwana 68 cents nu pound.
3: हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
4: है। Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट।